ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 6, तदनुसार 27 मई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। हम सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है और अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आकाशवाणी,
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोट

0: एक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन वार विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, बीते हुए कल की चिंता आज की रोशनी को धुंधला कर देती है। सच्ची दौलत अच्छे रिश्ते और शुद्ध विचार हैं। इसलिए हर सुबह को एक नए मौके के रूप में देखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ। आज आप सुनिएगा इस पाठ का भाग 201। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार है शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का 5वां भाग। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हमेरा ही प्यार के। 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार सुनील दत्त पर। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। बांसुरी वादक पारसनाथ से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे तय करेंगे सुरीला सफर। पर सुनिए सदा बहार नगमे और 3 बजे सुनिएगा सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में सुनिए आज के मेहमान में डॉक्टर सुनीता दुबे से यूनुस खान की बातचीत। प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए राग अनुराग। रात 8 बजे सुनिए हवा महल में नाटक यादों की परछाइयां का 3रा भाग। लेखन है सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशन है दीनानाथ का।

8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए। रात 10 बजे सुनिए छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। 6:35 होने वाले हैं, आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ।

भारतवाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरतवाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्या रत हूं। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 201।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें चर्चा की जा रही है स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों के बारे में। कल आपने सुना था राग वृंदावनी सारंग, आज आपको सुनवा रहे हैं राग धनाश्री।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को सादर प्रणाम। पिछली कड़ी में मैं आपको 19वीं शताब्दी के महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा हिंदी भाषा में रचित बंदिशों के बारे में बता रही थी। आज उनकी एक और कृति पेश करती हूँ जो राग धनाश्री में है। इसकी शैली भी कुछ ध्रुपद जैसे है। साहित्य इस प्रकार है। शीस गंग भस्म अंग अर्धंग गौरी संग, यानी कि बंदिश शिव जी की स्तुति में है। वैसे तो स्वाति तिरुनाल विष्णु भक्त थे और अधिकतर कृतियां पद्मनाभ स्वामी की स्तुति में हैं। तिरुवनंतपुरम में जो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है वह बहुत ही मशहूर है और महाराजा के परिवार के सदस्य सदियों से यहाँ की विशेष पूजाओं में भाग लेते आए हैं। एक और बात भी बताना चाहूँगी, हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति तिरुनाल ने जो कृतियाँ बनाई उनके अलावा 42 श्लोक, एक नवरत्न मालिका, 4 राग मालिकाएँ, 39 संस्कृत बंदिशें, ये सब भी उन्होंने बनाई। एक बंदिश तो कन्नड़ा भाषा में भी है और एक है मलयालम में। एक और है मणिप्रवालम, अर्थात अनेक भाषाओं के मिश्रण से भी बनाए हैं। इतना सब उन्होंने 34 वर्ष की आयु में ही बना ली थी। तो आइए अब आपको सुनाती हूँ धनाश्री राग में एक ध्रुपद शैली में बनाई हुई कृति। धनाश्री राग भीमपलास से मिलता जुलता है और स्वर दोनों में एक ही जैसे लगते हैं। तो सुनिए

ये थी धनाश्री राग में महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक ध्रुपद शैली की बंदिश। धनाश्री राग ज्यादातर भीमपलास राग से मिलता जुलता है। अब सुनिए एक फिल्म संगीत जो राग भीमपलास के स्वरों पर आधारित है।

0: राग भीम पलासी पर आधारित ये गीत था फिल्म राम राज्य से। आवाज थी सरस्वती राणे की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
3: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके

जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: नमस्कार, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है।
1: मुरलिक धुन सुन आई राधे आई राधे। जमुनक तट पर जमुनक तट पर नीरत करत उठ नीरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्दिग्नाथ दिग्दिग्नाथ दिग्दिग्धो दिग्दिग्धो दिग्दिग्ध राम तत थई तत थई राम तत थई तत थई राम तत थई।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। लता मंगेशकर की आवाज में नास्तिक फिल्म से गाना, सी रामचंद्र का संगीत। बोल हैं प्रदीप के

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे फंटूज फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: मैं झोला, आप भोला, अरे तू क्या है?
2: मैं

0: रंगीन रातें फिल्म से आप अभी सुन रहे थे शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाज में गाना, केदार शर्मा के बोल, रोशन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आप सबका स्वागत है हम है राही प्यार के कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आग फिल्म के इस गाने के साथ, महेंद्र कपूर और आशा भोसले के आवाज में, असद भोपाली के बोल और संगीत है उषा खन्ना का।

और कराही इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। ए इरशाद के बोल थे और संगीत किशोर कुमार का।

आया सावन झूम के इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम के बाकी गाने कुछ इस अंतराल के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति औरत फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल, संगीत है रवि का।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
5: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि

0: भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
1: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है, जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमेरिकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

0: भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा गेट के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गेट के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
1: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें दो ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुखपृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में CNG के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का

0: अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से। त्रिवेणी

नमस्कार श्रोताओं, मुस्कुराओ। मुस्कुराने में पैसे नहीं लगते, लेकिन मुस्कुराने से खुशियां जरूर आती हैं। जीवन में भागा दौड़ है, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, पर इस सब के बीच केवल एक चीज है जो आपको सदा के लिए खुशी दे सकती है, और वह है आपकी खिलखिलाती हंसी। तो एक बार जोर से खिलखिला लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम है, कई सारी और मुसीबतें भी हैं। इन सबके बीच हमारे पास हमारा अपना बचता है, वो है मुस्कुराना और खिलखिलाना। तो हंसी एक ऐसा उपहार है जो हमें मिला है और जो हमें बनाता है भीतर से मजबूत। अगर कहीं हार रहे हैं तो मुस्कुरा लीजिए, वो मुस्कुराहट आपकी जीत की प्रेरणा बन जाएगी। कभी अगर जीवन में कोई समस्या सामने दिख रही है तो बस मुस्कुरा लीजिए, वह समस्या के लिए दवा बन जाएगी आपकी अपनी मुस्कुराहट। और कोई भी साइड इफेक्ट इसके है नहीं, यह शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। तो मुस्कुराइए और हंसिए जोर से ठहाके लगाकर।

एक शेर पढ़ा था कहीं कि हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, मुस्कान हो तो हर मुश्किल भी आसान लगती है। हंसी हमें जोड़ती है, हमारे रिश्तों में मिठास भरती है, दिलों के बीच दूरियां कम करती है, और जब हम हंसते हैं तो ना ही हमारा मन हल्का होता है बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। कभी देखा है दूर से आते हुए किसी अनजान व्यक्ति को एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, वो मुस्कुराहट उसके साथ एक लंबी दूरी तक चलेगी और जाने कितने चेहरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना आपके लिए

और अपने परिवार के बीच, अपनों के बीच बैठकर जोर से ठहाके लगा लीजिए। ठहाके लगाने का मन नहीं है तो कम से कम मुस्कुरा ही लीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हंसी मजाक में कोई कुछ कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे लिए गलत कह दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को भूलकर हम सकारात्मक रूप से लेकर अपनी आत्मविश्वास के साथ जीवन के प्रति हल्का फुल्का नजरिया अगर रखें तो मुस्कुराना बहुत आसान होगा। तो मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए, और कुछ इस बात की तरह कि मुस्कुराने की आदत डाल लो दोस्तों, ये वही दौलत है जो मुफ्त में मिलती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएंगे और दो बार जोर से ठहाके लगाएंगे, और जी लेंगे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से, और साथ में आसपास के लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते।

ने क्या खूब कहा है कि गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी। गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, हर दर्द को पल भर में भुला जाती है हंसी। तो जीवन में अगर कोई भी समय आपको मिलता है तो एक खास समय निकालिए अपने लिए।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह ने ले ली है अंगड़ाई और आज का दिन करवट ले रहा है आपकी तरक्की की ओर, आपकी खुशहाली की ओर। और इसी पॉजिटिव थिंकिंग को म्यूजिकल नोट से सजा रहा है चित्रलोक कार्यक्रम का पहला गाना भाग मिल्खा भाग फिल्म से। प्रसून जोशी के बोल और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का। आवाज है सिद्धार्थ महादेवन की।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

लॉय मेंडोसा, शंकर महादेवन और इलारन की आवाज में आप सुन रहे हैं लक बाय चांस फिल्म से ये गाना। जावेद अख्तर के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

टैक्सी नंबर 9211 फिल्म से आप सुन रहे हैं अदनान सामी की आवाज में गाना विशाल ददलानी के बोल हैं और विशाल शेखर का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए सुनते हैं लक्ष्य फिल्म का गाना। शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं। शंकर एहसान लॉय का संगीत।

स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद का दिन है। आज़ादी के बाद नव भारत के निर्माण में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। उनकी स्मृति को सादर नमन।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने संतराल के बाद।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। शाशा तिरुपति और अरिजीत सिंह की आवाज में अतरंगी रे फिल्म से ये गाना इरशाद कामिल के बोल या रहमान का संगीत।

बकरीद इस्लाम धर्म का प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। अटूट आस्था, त्याग और संपन्न की भावना के प्रतीक बकरीद पर्व की ढेर सारी बधाई।

0: ने आपसे आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में

विविध भारती पर आप सुन रही हैं चित्रलोक कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं नील एंड निकी फिल्म से, सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर, क्लिंटन सेरिजो, डोमिनिक सेरिजो की आवाजों में अन्विता गुप्तन के बोल, और संगीत है सलीम सुलेमान का।

गर्मी के मौसम से तो हम सब बेहाल हैं ही, लेकिन अब लग रहा है लव का सीजन भी स्टार्ट हो रहा है। यकीन नहीं आ रहा? आ जाएगा यकीन, अगला गाना सुन लीजिए। लव ब्रेकअप्स जिंदगी फिल्म से बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, सलीम सुलेमान का म्यूजिक।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी।

0: और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
0: श्रोताओं अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज का अखबार।
3: आज का अखबार।
0: श्रोताओं आज का अखबार कार्यक्रम में मोनिका ठाकुर करती है आप सभी का तहे दिल से स्वागत। वैसे देखा जाए तो जो चीज हमें सुकून देती है, आनंद देती है, उसके वेलकम के लिए हम हमेशा बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम की बात की जाए तो वो तो अलग ही है। मई माह की शुरुआत तो थोड़ी ठंडक से हुई थी, लेकिन अब गर्मी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया है और इस गर्मी से बचने के लिए हमने एयर कंडीशनर का प्रयोग जो है वो भी बढ़ा दिया है। घर, ऑफिस, कार, मॉल, हर जगह एसी का उपयोग लगातार हो रहा है। एसी हमें गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, जिनमें सबसे आम समस्या है आंखों में ड्राइनेस यानी कि सूखेपन की। हम में से कई जितने भी लोग हैं दिन भर एसी वाले कमरे में रहते हैं, शुरुआत में हल्की जलन, खुजली, आंखों में भारीपन महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे ये समस्या बढ़ने लगती है। कई बार तो ऐसा लगता है मानो आंखों में रेत चली गई हो। कुछ लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं तो कुछ को बार बार पानी आने लगता है। असल में एसी कमरे की नमी जो है वो कम कर देते हैं। जब हवा में नमी घटती है तो हमारी आंखों की जो प्राकृतिक नमी है वो भी जल्दी ही सूखने लगती है। आंखों पर मौजूद आंसुओं की पतली परत जिसे टियर फिल्म कहा जाता है वो कमजोर हो जाती है और यही वजह है कि आंखों में सूखापन बढ़ने लगता है। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे भी घंटों एसी में बैठकर मोबाइल या टीवी देखते रहते हैं, इससे उनकी आंखों पर दो गुना असर पड़ता है। कई बार वे शिकायत करते हैं कि आंखें दुख रही हैं या फिर धुंधलापन उन्हें दिखाई दे रहा है। और अगर हम कार में सफर करते हैं तो मैक्सिमम जब भी गर्मी होती है तो हम एसी को ऑन कर देते हैं और उसकी हवा सीधे तौर पे हमारे चेहरे पर और आंखों पर आती है। ये हवा आंखों को तेजी से सुखाती है और जो कॉन्टैक्ट लेंसेज का उपयोग करते हैं उनको भी ये समस्या ज्यादा रहती है। अब सवाल उठता है कि इससे बचाव कैसे करें। सबसे पहला उपाय, एसी की हवा सीधे आंखों पर ना आने दें। दूसरी बात, हर 20 मिनट बाद कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन से नजर हटाकर आंखों को आराम दें। इसे 20-20-20 यानी ट्रिपल 20 नियम भी कहा जाता है। हर 20 मिनट बाद 20 फीट दूर किसी वस्तु को 20 सेकंड तक देखें। और अगर तीसरे नियम की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। और चौथा, कमरे में थोड़ी नमी बनाए रखने के लिए पानी से भरा बर्तन इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से सलाह भी आप ले सकते हैं। एसी हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन उसका संतुलित उपयोग ही सही है। छोटी छोटी सावधानियां हमारी आंखों को सुरक्षित रख सकती हैं। और ये आंखें अगर सुरक्षित रहेंगी तभी तो दिल के अफसाने इनसे हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि आंखें बिन कहे दिल की बात बयां कर देती हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं आज का अखबार कार्यक्रम और आज का अखबार कार्यक्रम में अब रुख करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर।

दिल्ली में 12 दिन में चौथी बार बढ़े सीएनजी के दाम, 2 रुपए महंगी। दिल्ली में अब 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची कीमतें। नोएडा व गाजियाबाद में दाम 91.70 रुपए प्रति किलो। बीएसएफ के चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड से सीमा पर होगी जीरो घुसपैठ। बीकानेर सीमा चौकी से केंद्रीय गृह मंत्री का बड़ा संदेश, अगले 6 महीने में लगेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। उत्तराखंड में 35 लाख यात्री पर्यटक पहुंचे। चारधाम यात्रा टूरिस्ट सीजन से भीड़ बढ़ी, ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई, 5 से 10 लीटर पेट्रोल ही मिल रहा। यूरोपीय मौसम एजेंसी का 15 दिन का पूर्वानुमान, 29 मई से 5 जून तक 90% भारत में प्री मॉनसून बारिश। गुजरात टाइटंस को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 के

फाइनल में पहुंची। क्वाड देशों ने दुर्लभ खनिजों के लिए मिलाया हाथ, 20 अरब डॉलर के निवेश से तोड़ेंगे चीन का वर्चस्व। क्वाड के साझा बयान में चीन को कड़ा संदेश, हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक रवैया नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें।

पंजाब के ज्यादातर शहरों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री बढ़ा। मंगलवार को बठिंडा सूबे का सबसे गर्म शहर रहा, जहां पारा 45.8 डिग्री दर्ज किया गया। हरियाणा में सिरसा में सबसे अधिक 46 डिग्री तापमान रहा। ऐसे में पर्यटक रुख कर रहे हैं हिमाचल की ओर। रोहतांग दर्रे पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 1200 वाहनों को ही रोहतांग जाने की अनुमति। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 2 जून से 11 जून तक। शिक्षा बोर्ड ने जारी की डेटशीट। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी द्वारा आयोजित भर्ती रैली में भाग लेने वाले अग्निवीर के चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी। 30 को हिसार में उपस्थित होना होगा। शिमला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव 2026 इस बार नए तेवर के साथ, व्यापक स्वरूप और जनभागीदारी के बड़े विजन के साथ आएगा नजर। इस बार इसका आयोजन 8 से 12 जून तक होगा। फेस्टिवल के दौरान शिमला के 7 पहाड़ों का दीदार हेलीकॉप्टर से करवाने की योजना। पहली बार 50 स्कूलों के विद्यार्थियों को ग्रीष्मोत्सव से जोड़ा जाएगा। तो ये थी क्षेत्रीय खबरें।

आज का अखबार कार्यक्रम में चलिए अब बात कर लेते हैं स्थानीय खबरों की। चंडीगढ़ प्रशासन ने ईद उल जुहा के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में किया बदलाव। अब 27 मई की जगह 28 मई को सार्वजनिक अवकाश। चंडीगढ़ वासियों के लिए अच्छी खबर, पुणे व बेंगलुरु के लिए 1 जून से एयर इंडिया की सीधी उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। चंडीगढ़ अब भयंकर गर्मी और लू की चपेट में, पारा 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 28 मई को चलेंगी 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा, मौसम भी बदलेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने PUCET 2026 प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट किया घोषित। PU में 1 और 2 साल के MCOM कोर्स के लिए आवेदन शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ की ओर से जून 2026 सत्रांत परीक्षा के लिए नियुक्त परीक्षा अधीक्षकों हेतु वर्चुअल ओरिएंटेशन कार्यक्रम किया गया आयोजित। PGI ने ऑपरेशन थिएटर का समय बढ़ाकर हजारों मरीजों के इलाज की रफ्तार तेज कर दी है। संस्थान के 12 घंटों के इलेक्टिव OT मॉडल ने एक साल में बड़ी सर्जरी की संख्या में 10.46% की बढ़ोतरी की दर्ज। IPL 2026 हैदराबाद और राजस्थान के बीच एलिमिनेटर आज मुल्लांपुर स्टेडियम में शाम 7:30 टक्कर, जीतने वाली टीम आगे जाएगी। सुखना लेक की जल क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू हुआ डीसेल्टेशन, रेगुलेटरी एंड से हटाई जा रही गाद, वेटलैंड संरक्षण और जल स्तर सुधारने के लिए यूटी प्रशासन ने उठाया कदम। चंडीगढ़ नगर निगम ने शहरवासियों से 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील की। देर से भुगतान करने वालों पर 25% पेनल्टी और ब्याज लगाया जाएगा। तो ये थी स्थानीय खबरें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं आज का अखबार कार्यक्रम और चलिए एक और खास खबर आपको दे दें। शहर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए फोटो इलेक्ट्रोल प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी और फिलहाल अगर आपको बता दें तो निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की मैपिंग का काम 72.29% तक पूरा हो चुका है और 24 साल बाद यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 15 जून से शुरू होकर 14 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और उनसे गणना प्रपत्र भरवाएंगे।
2: लड़की अकेली शन्नो।

0: आज का अखबार कार्यक्रम में बस इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति

0: की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के साथ खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
4: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
5: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
4: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
5: आपका

0: अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे आधार जैसा ना कोई।
0: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
0: और हमारा ईमेल आईडी है akashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: श्रोताओ, अब आपको बता दें कि दूरदर्शन हरियाणा पर आज कौन कौन से कार्यक्रम के समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे। विशेष प्रतिभागी की कला, साहित्य एवं मनोरंजन के क्षेत्र में उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम यादों का सफर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं 3:30 पर। कानून के विभिन्न पहलुओं पर आधारित कार्यक्रम कानूनी सलाह 5:00 प्रस्तुत किया जाएगा। कृषि अनुसंधान एवं किसानों की समस्या व निदान और उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम किसान आप देख पाएंगे 5:30 पर। और 6:30 साप्ताहिक ज्वलंत मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम चंडीगढ़ स्पीक्स प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये थे दूरदर्शन हरियाणा पर प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। और श्रोताओ, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हैलो चंडीगढ़।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: श्रोताओ, हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में मोनिका ठाकुर करती है आप सभी का तहे दिल से स्वागत। और बताइए कैसे हैं आप। जितनी बेसब्री से आपको इंतजार रहता है इस कार्यक्रम का, सच मानिए उतने ही बेताब हम भी रहते हैं आपसे बातचीत करने के लिए, आपके विचार जानने के लिए और बढ़िया बढ़िया सा गीत संगीत आप तक पहुँचाने के लिए। लेकिन अगर गर्मी की बात की जाए तो गर्मी ने इस बार हद ही कर दी है और जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे तोड़ दिए हैं। सुबह घर से निकलते ही तेज धूप, गर्म हवाएं और पसीने से बेहाल लोग, हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात है, उफ कितनी गर्मी है। दैनिक जीवन की भागदौड़ में किसी को ऑफिस पहुंचना है, किसी को खेतों में काम करना है, बच्चों को स्कूल जाना है। फिलहाल उन्हें राहत मिल चुकी है क्योंकि स्कूल से छुट्टियां हो चुकी हैं। और बात करें गृहिणियों की तो रसोई की तपिश भी उन्हें झेलनी पड़ती है। ऐसे में शरीर ही नहीं मन भी थक जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, ऊर्जा कम हो जाती है और दिन भारी भारी सा लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी, सही खान पान और छोटी छोटी अच्छी आदतों से हम इस झुलसती गर्मी में भी खुद को तरोताजा और ऊर्जावान रख सकते हैं। तो आज के लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम बात करेंगे झुलसती गर्मी में कैसे रहें तरोताजा। ये विषय आपके लिए हम लेकर आए हैं, इसी पर बातचीत होगी। तो गर्मी से बचाव के लिए जो आसान से घरेलू उपाय हैं, खान पान में हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, कैसे दिन भर हम फ्रेश रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, ये सुनेंगे आपके अनुभव, आपके कुछ खास नुस्खे गीत संगीत के साथ। तो इंतजार किस बात का है, उठाइए फोन और मिलाइए नंबर। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, दूसरा फोन नंबर है 2660617 और 2660619, एसटीडी कोड है 0172। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस फोन कॉल के साथ। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार
0: जी, आपका परिचय।

0: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
1: राकेश जी क्या बात है, यहाँ पर गर्मी और कोटखाई में गर्मी से राहत, तो बताइए कि आपके वहाँ तो इतनी गर्मी है नहीं, लेकिन कभी तो गर्म इलाकों में गए होंगे आप।
0: जी जी गर्म इलाकों में गया हूँ, क्या बोलते गया हूँ मैं सिटी शिमला गया तो हुआ तो गर्मी तो बुरे हाल होते। हालांकि कोटखाई में भी गर्मी होती है लेकिन 25-30 तक तो वहाँ से आगे तो तापमान जाता ही नहीं है
1: जी,
0: तो गर्मी का तो ये बुरा हाल है। लेकिन हमारी मैं जो जैसे गुंडा क्षेत्र में रहता हूँ, हमारी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहाँ दिन को हवा चलती रहती है पूरे दिन
1: जी,
0: तो हवा चलती रहती है, शाम को सिर्फ गर्मी हो जाती है और दिन को हवा चल जाती है, तो फिर बहुत अच्छा मतलब ये रहता है दिन को, तो आप बाहर बैठ सकते हैं, खिड़की खोल सकते हैं, ताजी ताजी हवा आ जाती है अंदर।
1: लेकिन यहाँ तो खिड़की, अगर हम प्लेन्स में अगर खिड़की भी खोलते हैं ना राकेश जी, तो वो जो गर्म हवा के थपेड़े हैं वो गालों पर लगते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, या तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती है और बहुत अच्छा मौसम रहता है यहाँ।
1: तो हम तो यही कहेंगे कि हिमाचल का जो की जो खूबसूरती है वो बरकरार रखे, ताकि वहां पर जब बारिश हो तो वहां की ठंडी हवाएं यहां भी पहुंच सके, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पहुंच जाएगी आपकी जगह बारिश रहेगी तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे बढ़ती गर्मी हो रही तो गर्मी में थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे आजकल जो गर्मी में जो हम चीजें खाते हैं गर्म गर्म, ये चीज नहीं खानी चाहिए। जैसे खाना अगर खाना होते से आजकल जो पुदीना है और लाभदायक है गर्मी के मौसम में खाने की।
1: तो पुदीने को किस रूप में लें हम?
0: इसको इसकी चटनी खा सकते हैं या रायता बना के खा सकते हैं, और अगर आप उसकी चटनी खाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल जो है पेट को ठंडा करती है पुदीना की चटनी।
1: चलिए क्या बात है, एक नुस्खा हमें मिल गया कि पुदीने की चटनी आप ले सकते हैं। चलिए शुक्रिया राकेश जी हमसे बात करने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका, और हमारे लिसनर्स फोन तो कर रहे हैं लेकिन बीच में उनकी फोन लाइन कट हो जा रही है और हमारी कोशिश है कि उनको ऑनलाइन हम करें। जी नमस्कार।
2: हाँ जी नमस्कार जी,
1: कार्यक्रम में आपका स्वागत है और एक अनुरोध रहेगा आपसे कि अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम आप थोड़ी कम कर दें या थोड़ा
2: कर दिया जी, रेडियो है
1: जी। जी जी आपका नाम?
2: मैं शरण भल्ला बोल रहे हैं जी, पटियाले तो जी।
1: भल्ला साहब आप बताइए कि गर्मी के मौसम में कैसे हम अपने आप को तरोताजा,
2: ऐसे है कि मेरी 70 साल उम्र है, हम दादा को ना अमृतसर में देखते थे कि वो कच्ची लस्सी बनाते थे सुबह और शक्कर डालते थे देसी
1: जी,
2: और सबको दो दो तीन तीन गिलास पिला देते थे, बाल्टी भर के बनाते थे, खुद भी पीते थे, दोपहर को दूसरी लस्सी बनाना, सुबह कच्ची लस्सी बनाना, दोपहर को दूसरी, शाम को दूध वाली लस्सी बनाना
1: जी।
2: और जैसे अभी शिमला वाले ने बोला पुदीना तो गर्मियों में एक बहुत नियामत खुराक है जी
1: जी जी जी,
2: ये सोने पे सुहागा है, खीरा खाओ, दवाना खाओ, खरबूजा खाओ,
1: जो जूसी फ्रूट्स हैं बिल्कुल।
2: देखो मेरी बात एक सुनो, लोगों को गर्मी अगर सोचेंगे तो लगेगी, नहीं सोचेंगे तो नहीं लगेगी
1: जी,
2: गर्मी एक मौसम ऐसा है कि जहाँ सबका सीजन भी चलता है, सर्दी, ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जी जहाँ सब मौसम है
1: जी, 6 ऋतुएं हमें मिलती है देखने को,
2: 6 मौसमों से देश पंजाब भरा हुआ है, लोग तो पंजाब को तरसते हैं कि गर्मी भी देखें सर्दी भी देखें
1: जी,
2: ये मौसम बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, लोग ऐसे ही डर रहे हैं ये होगा वो होगा कुछ, लेकिन अपना सिर को थोड़ा सा परहेज रखें,
1: बिल्कुल,
2: सुबह गिल्ला पानी अगर जाना है तो तौलिया सिर पे रखें, पानी की बोतल रखें, ग्लूकोज की डब्बी रखें
1: जी,
2: और जानवरों को ज्यादा ख्याल रखें कि वो बेजुबान है, हम तो मांग लेंगे पानी, वो नहीं मांगेंगे, उनको गर्मी ज्यादा लगती है, बेचारे पानी में नहाते भी हैं, पर आजकल जानवर दिख भी नहीं रहे बहन जी।
1: जी भला साहब हम ये भी देखते हैं कि बैल्कनीज में या गलियों में या सड़कों पर जो पंछी हैं वो मरे पड़े हैं क्योंकि उन्हें पानी ही नहीं मिल पा रहा है,
2: बुरा हाल है जी, मैं बोलता हूँ कि इंसान को तो सोचो को तो लगती है गर्मी। मैंने अमिताभ बच्चन के कानों जुबान से सुना हुआ है, कंबल लपेट के बादशाह की शूटिंग कर रहे थे
1: जी,
2: तो वो बोल रहे थे कि सोचो तो गर्मी लगती है, नहीं सोचो तो नहीं लगती, बोलता गर्मी गर्मी है, सर्दी सर्दी है, मौसम मौसम है, तो हर मौसम सुहाना है
1: जी जी,
2: लेकिन इसको निभाना चाहिए हर आदमी को,
1: पर अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें क्योंकि वो जो विल पावर है वो तो आपको स्ट्रांग बनाती है।
2: सुबह नींबू पानी पीता हूँ जी, खरबूजा खाता हूँ, दवाना खाता हूँ, खीरा खाता हूँ, मैं रोटी कम खाता हूँ, चावल के साथ दही खा लेता हूँ, दही भी ताजा हो तो खाता हूँ, नहीं तो खट्टा दही बहुत नुकसान देगा, आजकल गला खराब हो रहा है लोगों का
1: जी,
2: आज दही नहीं खाया कल खाया था खट्टा था, वो हलवाई को बोला टेलीफोन।

0: के दही खाता है, ये सोचने से गर्मी लगती है मैडम जी।
1: जी जी जी,
0: लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, ये तो गर्मी आती जाती है। देखो जब तक दुख नहीं देखेंगे सुख का एहसास नहीं होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हर मौसम का अपना मजा है,
0: अपना मजा है, मजा लो, खाओ पियो, ये खाने के मौसम है, हरी सब्जी खाओ
1: जी,
0: मौसम बाहर के सब्जी फल, आम लोग बोलते हैं आम खाओ, आम गर्म होता है मैडम, दूध में मिला दो तो ठंडा हो जाता है।
1: बिल्कुल, तो आम की तो बहुत सारी चीजें भी बनती है खाने पीने की, और गर्मियों के मौसम में खास तौर से
0: बैन बाजारों में रेहड़ियों पे बैन लग जाएंगे, ये जो नूडल बन रहे हैं, पिज्जा बन रहे हैं, गोलगप्पे बन रहे हैं, इनका आजकल बैन लगा देना चाहिए, पकौड़ा बन रहा है, ये तली चीजें बंद कर दो। लोगों को आप सोचना चाहिए कि घर में सादा खाना बनाओ, चावल दही दाल मूंगी की बनाओ, खाओ मजे लो, कोई सर्दी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है। लोगों ने एक ढोंग चार रखा, गर्मी बहुत है, और सूरज देवता उसको किसी का नुकसान नहीं करता वो जी।
1: जी जी जी,
0: उसने सबका सोच रखा है कि किसको क्या देना है, किस टाइम क्या देना है।
1: जी, हमारा मन बहुत चंचल है भल्ला जी, और अगर हम अपनी जुबान पे ये जो हमारी जीवा है उसके स्वाद को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना तो हाँ, तो हम बहुत सारी चीजों को सुधार सकते हैं, है ना।
0: अपना तो शरीर भी सुधार सकते हैं। मैंने 70 साल में बहुत देखे हैं, बहुत हिंदुस्तान घूमा है, श्रीनगर से कश्मीर, श्रीनगर भी देखा है, लेकिन जब वहां से घर में आते हैं ना जी, शिमले कश्मीर से
1: जी,
0: लेकिन जब दुख का एहसास होता, सुख तो भोग आए
1: जी जी जी,
0: लेकिन घर में आने के बहुत तकलीफ होती है, आप दुख भोगो, सुख का एहसास अपने आप मिलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया आपसे बात करके भल्ला जी।
0: हाँ जी, बहुत मेहरबानी जी फोन उठाने के लिए, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं जी।
1: जी जी, शुक्रिया। और अब जेठ महीने की गर्मी है तो इसी पर एक गीत आपके लिए।
0: महीना जो है ना बड़ा महीना होता है, आगे सावन भी आएगा, बातों इससे भी आएगा।
1: जी जी जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
0: मैं किसान घर छोड़ गया था, साधु बन गया था, गर्मी इस गर्मी में साधु नहीं बना था, बातों में बन गया था।
1: बिल्कुल,
0: वो गर्मी जो है ना वो सहन करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, अभी जो साउंड के बाद आएगी।
1: जी जी जी जी, तो चलिए रखिए अपना ख्याल।
0: नहीं है आप लोग एसी में बैठे हैं, मैं एसी से नफरत करता हूँ।
1: उस पर भी हमारी बातचीत हुई, अगर आपने कार्यक्रम सुना होगा।
0: मैं सारे बातें सुनता रहता हूँ, जब मेरे को टॉपिक अच्छा लगता है ना तो मैं अपने आप जो मैंने अपने आप पे हंडाई है ना उस पर बात करता हूँ जी मैं।
1: जी जी जी जी,
0: वैसे फोन करने का मेरे को शौक नहीं है, बट जब टॉपिक बहुत अच्छा है, गर्मी से बचो मैं बोलता हूँ।
1: जी जी जी,
0: सोचो मत की गर्मी है
1: जी, जी।
0: मौसम है, सूरज देवता है, नजदीक आ गया, ये आ गया, कहर कर रहा है, कोई कहर नहीं कर रहा है जी, वो बहुत दयावान है।
1: जी जी जी, भल्ला साहब जी, गाना बैकग्राउंड में चला है और आपके साथ साथ हमारे तमाम लिसनर्स भी सुन सकें, इसके लिए हम प्ले कर रहे हैं। सुनते रहिए यूं ही कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़
0: जी।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि झुलसती गर्मी में कैसे रहें तरोताजा इस विषय पर। जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: हेलो
1: जी आपका नाम?
2: ठाकुर जी नमस्कार। मैडम
1: नमस्कार। नमस्कार।
2: सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सेक्टर 51 से।
1: सुरेंद्र कुमार जी कैसे हैं आप?
2: हाँ जी, आज आपने गर्मी का विषय बताया बहुत अच्छा है कि इसमें हमें ना बहुत एहतियात से सावधान रहना है क्योंकि मैं इसके बारे में दो लाइनें बता रहा हूँ। गर्म गर्म हवा चली लू से हो रहा बुरा हाल। गर्म गर्म हवा चली लू से हो रहा बुरा हाल। बाहर निकलना बहुत जरूरी हो तभी निकलिए धीमी पड़ गई चाल।
1: जी जी जी बिल्कुल सही। तो बाहर तो
2: हमें जी जी अपनी चाल ढीली नहीं करनी, हमें उपाय करने चाहिए जो आपने बताया है। उपाय यही है कि हमें वो जरूरी काम हो तभी हम बाहर निकले, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों।
1: जी
2: जरूरी सिर पे कपड़ा लेके तौलिया लेके चले और पानी की बोतल साथ में रखें क्योंकि पानी ही जीवन है।
1: जी।
2: और दो दो बूंद पानी भी मिलेगा तो जीवन, चाहे पक्षी हो चाहे हम हो कोई भी हो जीव जंतु या मनुष्य, उसको पानी के बिना तो जीवन बड़ा दुर्लभ है, मुश्किल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि एसी के कमरे में बैठ जाते हैं और पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं, लेकिन एसी के कमरे में जब हम बैठते हैं तो उससे भी हमारी आंखों में और शरीर में ड्राइनेस आती है। तो जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में हम पानी पिए, है ना?
2: बिल्कुल
1: जी। और क्या कर सकते हैं, कोई और अगर कोई टिप
2: हो आप? मैं ये कहूंगा जी खान पीन का ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान बहुत जरूरी है। हमें कोई कटे फल ना खाएं, कोई बाजार में ऐसी चीज ना खाएं जिससे हजमी हो जाए और फिर हम मतलब कठिनाई में पड़ जाए, दवाइयों के चक्कर में पड़ जाए तो वो और भागदौड़ हो जाएगी। एहतियात जो इलाज है वो बेहतर है, इलाज से बेहतर है उपाय करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी।
1: शुक्रिया सुरेंद्र जी हमसे बात करने के लिए।
2: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कार्यक्रम

0: में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, आपका नाम?
1: हरियाणा से बोल रहे
0: हैं। हरियाणा से सर, आपका नाम?
1: बहादुर सिंह है जी।
0: बहादुर सिंह जी, आज के कार्यक्रम के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: आज गर्मी के बारे में है प्रोग्राम।
0: हाँ, विषय हमारा है कि ये जो गर्मी है जिसमें हम इतने झुलस रहे हैं, उसमें अपने आप को तरोताजा कैसे रख सकते हैं हम?
1: हाँ जी, हाँ।
0: कुछ घरेलू नुस्खे जिससे आप अपने आप को बचाते हैं गर्मी से और आप तरोताजा भी रहते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे या बुजुर्ग जो हैं वो बड़ी जल्दी तबीयत खराब हो जाती है इस गर्मी के मौसम में।
1: हाँ जी, ठीक है
0: जी। जी
1: हाँ, पानी पानी वाले फल है जी, जैसे खीरा है, तरबूज है
0: जी,
1: ये ज्यादा खाने चाहिए। खाना कम खाना चाहिए,
0: बिल्कुल हैवी खाना कम खाएं, और जो जूसी फ्रूट्स हैं या सैलेड है उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी जाए। तो
1: हम सलाद वगैरह जी, सब्जी हरी सब्जी।
0: और घर से, बहादुर सिंह जी, घर से बाहर निकलें तो किन बातों का ख्याल रख सकते हैं हम?
1: बस ये जी, सिर पे कपड़ा रख के निकलते हैं जी।
0: जी
1: हाँ, कपड़ा
0: जी, टोपी आप सिर पे रखें, हल्के रंग के कपड़े पहने तो वो भी काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकता है, है ना? हम कई
1: कपड़े पहने सारे कपड़े।
0: जी जी जी, शुक्रिया बहादुर सिंह जी हमसे बात करने के लिए। श्रोताओं, क्योंकि गहरे रंग के कपड़े जब हम पहनते हैं तो उसमें गर्मी और ज्यादा रखती है। कॉटन के कपड़े आप पहने, हल्के रंग के पहनेंगे तो धूप जो है वो अंदर नहीं आएगी बल्कि वो टकरा के वापस चली जाएगी, तो इससे गर्मी हमें कम लगती है। तो इसी तरह से सुनते रहिए कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़, और एक के बाद एक अच्छे अच्छे गीत आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।

0: आज के विषय पर।
1: मैडम गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी का जो ये असर है 15 मई से 15 जुलाई तक रहना।
0: बिल्कुल,
1: तो गर्मी में हम ध्यान रखें, कुछ जो देसी उपाय हैं जो हमारे बुजुर्ग किया करते थे
0: जी,
1: वो एक तो पानी का इंटेक जाए, आप नींबू पानी पिए, कोई शरबत पिए
0: जी,
1: जिससे आपकी पानी की जरूरत पूरी होती रहे।
0: बिल्कुल,
1: और जब लू लगने का जो एक कारण है बताया जाता है कि जब पसीना ना निकले तो समझो कि आपको लू लग चुकी है
0: जी,
1: तो इन बातों का ध्यान रखें। और हम जो कर सकते हैं इसमें आम पन्ना जो बनाते हैं लोग
0: जी जी जी,
1: आम पन्ना हो या ये सत्तू के जो चने का सत्तू होता है
0: जी,
1: उसमें नींबू निचोड़ कर उसको भी पिया जाए तो काफी राहत मिलती है
0: जी। और इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें अगर हमारे लिसनर्स हमें बताएंगे तो हमारा यहाँ पर स्टूडियो में बैठे बैठे बिल्कुल मन करेगा कि काश हमारे पास भी ऐसी ड्रिंक होती है, ये चीज खाने को होती तो गर्मी से राहत हमें भी मिलती है ना।
1: जी जी, तो मैडम ऐसा है कि पानी किसी रूप में आप लस्सी पिए, दही खाएं, जो भी ठंडे पेय पदार्थ खाने की चीजें, आप तरबूज खाएं और सलाद जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा खाएं
0: जी। सतपाल जी, हम अक्सर सुनते हैं लोग कहते हैं कि सर ये गर्मी के मौसम में गर्मी से राहत पाने के लिए गोंद कतीरा आप जरूर लें, उसको भिगो लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं डेली लेता हूँ मैडम, मैं थोड़ा सा स्लिप कर गया
0: जी, ये छुपा के रखी थी ये चीज, ये क्यों?
1: रूह अफजा में मैं डालकर इसको पीता हूँ, रात को भिगो कर रख देता हूँ
0: जी,
1: तो ये भी काफी फायदेमंद है
0: जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जो जो चीजें बताई, हमारे जो लिसनर्स इन चीजों को नहीं अपनाते हैं जरूर अपनाएंगे और फायदा उठाएंगे इस चीज से। और गर्मी में
1: एक जो नारियल होता हरे वाला
0: जी,
1: सीजन में तो महंगा बहुत है लेकिन वो अमृत की तरह है, उसका फायदा बहुत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जब भी आपको मौका मिले, चाहे सप्ताह में एक दिन ही पिए, दो दिन ही पिए, जितना आप एफर्ट कर सकते हैं
0: जी,
1: और इससे फायदे बहुत हैं और शरीर को लाभ ही लाभ, इससे कोई हानि नहीं
0: जी। शुक्रिया सतपाल जी हमसे बात करने के लिए।
1: थैंक यू मैम।
0: जी नमस्कार, आप भी अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं और जितनी आपकी पहुंच में है वो चीजें आप लेकर गर्मी से राहत पा सकते हैं। अपना ही ख्याल मत रखिए, जो आपके साथ बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं होते तो मन के सच्चे हैं लेकिन शरारती भी बहुत होते हैं और वो इस गर्म मौसम में घर से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि छुट्टियां पड़ चुकी हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि जब तक धूप है बच्चों को घर से बाहर आप ना निकलने दें। जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: मोनिका ठाकुर जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
0: आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: मैं सतीश कुमार सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा जी।
0: जी सतीश जी, आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
2: भूल छूक गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ
0: जी,
2: जब सूखा आ गया, गर्मी बढ़ गया, हम सब कुछ भूल जाते हैं
0: जी जी जी।
2: गर्मी में आके घर से फटाफट पानी पीते हैं जल्दी में
0: जी जी जी,
2: जो कि हमें ठहर के पानी पीना चाहिए जी।
0: बिल्कुल,
2: बाकी बर्फ है, आइस है, जो ये बनी है पीने के लिए तो बनी ही नहीं। ये सिर्फ ठंडा करने के लिए बनी थी, बर्फ को थोड़ा कूट कर बोतल लगाई जाती थी आइस बॉक्स में, तब ठंडा करने के लिए बनी है जी, बर्फ पीने के लिए नहीं बनी जी।
0: जी, और मैक्सिमम हम में से कई लोग ऐसे ही करते हैं कि जब गर्मी लगती है तो चाहते हैं कि जितना चिल्ड वाटर हमें मिल जाए उतनी शायद हमारे को
2: फिर और प्यास लगती है। बर्फ हमारे अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देती है, हमें पानी की प्यास और लगती है
0: जी।
2: हम बहुत गलती करते हैं, बाहर गन्ने वाले रस है कोई, फटाफट पी लेते हैं, अपना पानी की बर्फ डाली होती है उसने गन्ने के रस में
0: जी,
2: गलती
0: जी,
2: कटे फटे फल खाते हैं भी, गर्मी से राहत मिल जाए
0: जी जी जी,
2: उल्टा नुकसान हो जाता है, राहत मिलने के बजाय हम बीमार हो जाते हैं जी। गड़े का पानी पीना चाहिए जी।
0: बिल्कुल,
2: बहुत ज्यादा कोल्ड पानी नहीं पीना चाहिए, बच्चे बहुत कोल्ड पानी पीते हैं, फ्रिज से निकाल के आइसक्रीम निकाल के, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने दें जी आइसक्रीम को।
0: आइसक्रीम तो पिघल जाएगी।

0: सतीश मार्जी
1: घर में जो खिड़कियां दरवाजे उन पे चटाई पानी की भिगो के लगा देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा,
1: ठंडी हवा आएगी, एसी की थोड़ी वेंटिलेशन होनी चाहिए, एसी में हवा दूसरी तरफ से भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जी कमरे में
0: जी। और गर्मी से राहत पाने के लिए हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने हरे रंग की वो जाली सी लगा के रखी होती है ताकि गर्मी इतनी ज्यादा उनको ना फील हो,
1: ज्यादा से ज्यादा छाया में रहा जाए, 12 से 4 तो निकले ही ना
0: जी,
1: हल्के कपड़े पहने कॉटन वगैरह के, अपने आपको ढक के निकले, कोई छतरी लेकर चले, थोड़ा बहुत अपना प्रिकॉशंस लेकर चले।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जब हम प्रिकॉशन नहीं लेते भी क्या कर लेगी गर्मी, क्या कर लेगी, जब लगती है गर्मी तब पता चलता है जी।
0: अच्छा, तो जब गर्मी लगती है सतीश कुमार जी, हम सब इंसान है सबको लगती है, तो कौन सा गीत याद आता है?
1: गीत वो गर्मी में लगे जाड़े की याद आए, कुछ ऐसा गाना था।
0: अच्छा, जाड़े की याद, क्योंकि आप ठंडा माहौल चाहते हैं कि अगर ठंडा ठंडा मौसम मिले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना?
1: गर्मी ने गर्मी, जाड़े की याद आए
0: जी।
1: अब सर्दियां याद करते हैं जी।
0: हम बच्चों को तो कहते हैं कि धूप में मत निकलो, काले हो जाओगे, है ना? तो
1: काले हो जाते हैं जी।
0: जी, तो हम एक ऐसा ही गीत अपने तमाम श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं जिसमें कहा गया है कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर,
1: आपको पसंद है? गोरा रंग तो एक दिन उड़ जाएगा,
0: ढल जाएगा, बिल्कुल
1: ढल जाएगा सच।
0: तो सतीश
1: फिल्म का गाना है जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में
1: जीना तो मान पे फिल्माया गया।
0: तो आपके दौर का गीत बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत उम्दा हमारे जो गायक और गायिकाएं हैं उन्होंने गाया है,
1: किशोर कुमार और लता मंगेशकर।
0: जी जी जी, तो सुनना चाहते हैं आप तो पहुंचाते हैं आपके रेडियो सेट पर।
1: जी जी।

0: देखिए, बातें हमने बहुत सी की, हमारे तमाम लिसनर्स ने अपने अपने विचार साझा किए, लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि गर्मी में शरीर से पसीने के रूप में पानी तेजी से निकलता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी आप जरूर पीते रहिए, चाहे सादा पानी है, नींबू पानी है, छाछ है, नारियल पानी है या बेल का शरबत, ये सभी आपके लिए फायदेमंद है। और हल्का और ताजा भोजन अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि बहुत ज्यादा मसालेदार और तला भुना भोजन अगर आप करते हैं तो वो भी गर्मी बढ़ाता है। इसलिए तरबूज, खीरा, ककड़ी, पपीता और मौसमी फलों को भोजन में आप शामिल जरूर करें। फिलहाल हमारे एक और लिसनर है हमारे साथ, करते हैं उनसे बात। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हमारे बहुत से लिसनर्स ऐसे हैं जो फोन कॉल लगाते हैं और बाद में होल्ड पे चले जाते हैं, तो गुजारिश रहेगी कि कार्यक्रम जो है स्मूथली चलता रहे, आपको भी सुनने में मजा आए, तो अगर कॉल करते हैं तो बीच में आप ना काटें, बातचीत करें, थोड़ा सा सब्र रखें। जी नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम जी, दुलाराम बोल रहा हूँ जी।
0: दुलाराम जी,
1: हाँ जी मैडम जी, मैं तो बात कर रहा था गर्मी की। गर्मी तो चलो ठंडा ठंडा पानी पी लेंगे, लस्सी पी लेंगे, खत्म हो जाएगी। जो महंगाई की गर्मी देश में चल रही है, इसको कैसे ठंडा करेंगे, तो बढ़ती जाएगी
0: जी, उसका भी कोई ना कोई इलाज निकल कर आएगा। दुलाराम जी कौन सी जगह से बात कर रहे हैं?
1: मैं तो दुलाराम बोल रहा हूँ जी, मोहाली से।
0: मोहाली से, अच्छा। फिलहाल जो हमारे हाथ में है, हमारी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि वेल्थ अगर जाती है, अगर पैसा जाता है तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन हेल्थ जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान होता है।
1: तो मैडम जी, हेल्थ को तो तभी ठीक करेंगे ना। आजकल होटलों में खराब चीजें लोगों को सर्व की जा रही है, कोई हेल्थ बैग में जाकर चेक नहीं करता। गर्मी में तो बहुत जल्दी खाना खराब होता है, उसकी जिम्मेवारी है, दुलाराम की जिम्मेवारी थोड़ी है। दुलाराम तो एक कॉमन मैन है जो इन चीजों को वॉच करता है डेली
0: जी। तो ये अच्छा लगा दुलाराम जी कि आपने इन चीजों पर विचार अपने व्यक्त किए, और आप इतने ज्यादा सजग नागरिक हैं कि आप चाहते हैं कि इन चीजों पर भी फोकस किया जाए। तो डिपार्टमेंट में अगर आपको कहीं पर शक है तो आप उसकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, और उन चीजों उन जगहों पर एक्शन लिया जा सकता है। कोई अगर हमें कोई जबरदस्ती फोर्स नहीं करता कि हम बाहर का ही खाना खाएं, क्योंकि घर का खाना सबसे हेल्दी रहता है, और अगर इमरजेंसी में हमें बाहर का खाना भी पड़ता है तो हमारी भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उसी जगह पर जाएं जहां पे साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि अगर हम कहीं पर देखते हैं कि वहां पर खाने को प्रॉपरली नहीं सर्व किया जा रहा है तो हम विभाग को बताएं, है ना? है कि नहीं?
1: सरकारों की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है, कॉमन मैन क्या कर सकता है। अगर सरकारें इन पे चेकिंग रखेंगी, मैंने 2-3 देश घूमे हैं, वहां पे बहुत सख्ती है, सरकारें हर टाइम निगाह रखती है, लोगों को ऐसा गंदा मंदा खाने को नहीं मिलता। इधर हमारे देश में तो कोई पूछता ही नहीं है, जो मर्जी बांटते रहो, लोग खा लेते हैं।
0: चलिए, तो इसके लिए तो हमें सजग होना पड़ेगा ना कि हमारी थाली में कौन क्या सर्व कर रहा है। हमें अपने तमाम जितने भी लिसनर्स हैं उनसे यही अनुरोध रहेगा कि हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं कि हमें ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, लेकिन हम अपनी ड्यूटीज कितनी ईमानदारी से निभा रहे हैं, ठीक है? एक सजग नागरिक हमें बनना पड़ेगा, और अगर हम कुछ गलत देखते हैं तो उसके लिए भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी, ठीक है? और बोलना ही नहीं है, उसको प्रैक्टिकली करना भी पड़ेगा हमें। चलिए, मजा आया आपसे बात करके, और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मैडम
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नाम
2: बुराया से बोल रहा हूँ मैडम, रविंद्र कुमार बोल रहा हूँ बुराया।
0: ये बुराया जगह कहाँ है?

0: डिस्ट्रिक्ट जलंधर में, पंजाब में।
1: जालंधर में, ठीक है। तो आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखो जी, गर्मी तो मतलब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग बेहाल भी हैं सब,
1: बहुत बहुत।
0: और ये भी बात पक्की है कि आने वाले समय में और भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसा हमारा वातावरण चल रहा है या हम जैसे कुदरत से दूर जा रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले सालों में ये 55 तक भी पहुंच जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं।
1: बिल्कुल, देखिए जनसंख्या रविंद्र जी, जनसंख्या बढ़ रही है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हमें संसाधनों की जरूरत पड़ रही है। हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये जो संसाधन है इनकी कमी होती जाएगी। और
0: ग्लोबल वार्मिंग इसीलिए बढ़ रही है कि धरती के ऊपर जो इंसानों का बोझ अब ज्यादा हो, अगर लिमिटेड तरीके से हो तो फिर तो सब काम सही बैलेंस चलता है, लेकिन जब सारी जो मूल जड़ है वो आबादी की है, जब आबादी बढ़ेगी तो सब कुछ
1: जी जी जी
0: की कमी होती है। बाकी ये है कि गर्मी ने देखो दी, उसने तो अपना काम करना है, हम इसको रोक नहीं सकते, इससे बचाव जरूर कर सकते हैं अपने समझदारी से या उपाय करके जरूर कर सकते हैं
1: जी।
0: तो बाकी कोशिश करिए कि आज आजकल के दिनों में तो अपना जरूरी वाले काम है सुबह 9-10 बजे तक आप निपटा लीजिए।
1: क्या बात है,
0: ताकि दोपहर को आपको 2-3-4 बजे तक बाहर ना निकलना पड़े।
1: बिल्कुल,
0: तो अगर मजबूरी में निकलना भी पड़े तो अपना पूरा इंतजाम करके निकले, पानी की बोतल ले और सर पर गीला रुमाल रखे या छाता ले
1: जी।
0: तो आजकल तो मतलब वो हरे रंग की लगा रहे हैं लोग
1: जी, जालियां लगा रहे हैं। बिल्कुल,
0: जालियां लगा रहे हैं। वो हमारे यहाँ फाटक है, फाटक के ऊपर भी लोगों ने लगाई हुई है, तो लोगों को वहाँ खड़े होना पड़ता है, तो कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं खड़े खड़े।
1: जी जी जी,
0: फाटक इतनी देर बंद रहता है, तो मतलब ऐसी जालियां लगानी चाहिए। बाकी ये है कि पीने वाले पानी को सिर्फ ज्यादा ठंडा भी ना पी, क्योंकि ज्यादा ठंडा पीने से उतनी ज्यादा प्यास लगती है
1: जी। और गले भी खराब हो रहे हैं, चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं, वो एकदम से पी लेते हैं और बाद में वो गला जो है वो खराश और दर्द करना शुरू कर देता है।
0: बिल्कुल, और टेम्परेचर भी फिर हो जाता है गले के साथ
1: जी।
0: तो इसलिए मतलब पानी नॉर्मल पिए, हो सकता है तो अगर घड़ा घर में रखा है तो बहुत तो क्या ही बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: घड़े का पानी बहुत ही, उसको थोड़ी सी रेत में ना गीला करके रखो।
1: बिल्कुल,
0: तो वो जो है घड़े का पानी बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो बाकी ऐसा है कि जिसने बाहर भी जाना वो पानी में थोड़ा सा ग्लूकोज डाले या नींबू डालो, या जैसे हम करते हैं थोड़ा शरबत डाल के दूध डाल के उसमें से आधा चम्मच गूंद के पीला का डाल लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो भी बहुत ठंडा होता है। बाकी आजकल गर्मियों में बैल भी बहुत आते हैं, वो बहुत ठंडा होता है, मतलब उसको भी सेवन करना चाहिए अगर मिलते हैं तो हमारे यहाँ
1: जी। उसका मुरब्बा वगैरह बहुत से लोग खाते हैं।
0: हाँ, बैल बहुत, चलो होता तो कड़वा है लेकिन उसमें थोड़ी चीनी डाली है, लेकिन वो उसकी तस्वीर जो है ना वो बहुत ठंडी है, तो गर्मियों के लिए वो बहुत अच्छी है। तो इसलिए ऐसे मतलब अपना बचाव तो देखो इंसान के हाथ में है, कुदरत तो अपना जो काम कर रही है तो वो तो कर रही है, तो बाकी इंसान को भी चाहिए कि अपना बचाव आप करे।
1: जी जी जी,
0: और ज्यादा धूप में मत निकले। तो बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने आप को कूल रखिए,
1: बिल्कुल
0: अपने मन को कूल रखिए। अगर आपका मन कूल है ना तो धूप में भी आपको कुछ नहीं होगा।
1: क्या बात है,
0: अगर एसी के अंदर बैठे हुए आप तपे हुए हैं ना तो फिर गर्मी आपको वहां भी लगेगी। तो मतलब अपने मन को शांत रखिए
1: जी
0: और ठंडा रखिए, तो आपको गर्मी कुछ नहीं कहेगी।
1: क्या बात है, शुक्रिया रविंद्र जी हमसे बात करने के लिए।
0: धन्यवाद मैडम।
1: दोस्तों, आप अपने शरीर को तो तरोताज़ा रख सकते हैं इन सभी नुस्खों के साथ जो तमाम श्रोताओं ने बताए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गर्मी इतनी तेज़ी से ना बढ़े तो अपने आसपास आप पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि वो जो नमी है वो मौसम में भी बरकरार रहे। और अगर जो हमारे पहाड़ हैं जहाँ हम घूमने जाते हैं वहाँ का माहौल भी अगर साफ सुथरा रहे और वहाँ पर भी पेड़ों का कटाव ना हो, हरियाली बनी रहे, तो वहाँ पर जब बारिश होगी तो वहाँ का असर इन जो मैदानी इलाके हैं यहाँ तक ज़रूर पहुँचेगा। आप सुनते रहिए ये गीत हवा के साथ साथ, घटा के संग संग।

0: आप भी चले आइए कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में, इंतजार है हमें आपके फोन कॉल्स का और बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। फिलहाल ये कॉल कट चुकी है और इंतज़ार है हमें नेक्स्ट कॉल का। हम बात कर रहे हैं कि गर्मी के मौसम में आप अपने आप को तरोताज़ा कैसे रख सकते हैं, तो जानते हैं नेक्स्ट कॉलर से। भाई बातचीत करने की कोशिश तो हम कर रहे हैं लेकिन जैसे ही हम ऑनलाइन कर रहे हैं आपको वैसे ही फ़ोन कट रहा है, देखते हैं फिर से कोशिश करके। जी स्वागत है आपका। जी आपका नाम? हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि झुलसती गर्मी में कैसे रखें आप अपने आप को तरोताजा।
1: जी नमस्कार मैम, मेरा नाम ओम प्रकाश, मैं बराड़ा जिला अम्बाला से बोल रहा हूँ।
0: ओम प्रकाश जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उल्टी गर्मी में हम बचाव घर में रह के, जैसे हम ठंडा पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ठीक है जी, पंखे के नीचे जाते रहते, घर से बाहर ना निकलें, और मतलब और जो तली वगैरह चीजें हैं, तली वगैरह चीजों से ध्यान रखें, तली चीजें नहीं खानी, ज्यादा खराब कर सकती है, गर्मी है ना आजकल।
0: जी जी जी, तो हम तो कई बार हमें मजबूरी में बाहर खाना भी पड़ता है अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो, पॉसिबल नहीं है कि कई बार हम घर से लेकर जाते हैं, कई बार टाइम नहीं होता है, और लड़कियां तो फिर थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती है लेकिन बॉयज के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है।
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ जी,
0: ऐसे
1: हाँ
0: में बॉयज के किन बातों का ख्याल रखें?
1: हाँ जी हाँ जी मैम,
0: किन बातों का ख्याल रख सकते हैं लड़के ओम प्रकाश जी?
1: बस वही गर्मी से बचाव करना चाहिए हमें।
0: कोशिश करें कि अगर आप खाना नहीं ले जा सकते हैं तो फ्रूट्स अपने साथ जरूर लेके जाएं, पानी की बोतल आप घर से ही लेकर जाएं ताकि आप जगह जगह जाकर जो ठंडे पेय पदार्थ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
1: हेलो।
0: हाँ जी

0: तो मैं क्या घर में जैसे एसी वगैरह लगे हैं कईयों के, उससे भी मतलब आप बैठ सकते हैं। तो आप तो आजकल तो वैसे भी छुट्टियां पड़ रही हैं, छुट्टियों में तो ज्यादातर ना ही निकले तो बहुत ही, कम से कम निकले तो बहुत अच्छा है। हाँ
1: जी बिल्कुल सही कहा ओम जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
0: जी
1: तो श्रोताओं आपसे बात करके सच में बहुत मज़ा आया, और चलते चलते एक और गीत आपके नाम करते हैं, सूरज की बाहों में। और सूरज अपनी बाहें कुछ ज़्यादा ही खोलकर हमारा स्वागत कर रहा है, बहुत प्यार है, तो हम भी हर मौसम का स्वागत इन खुली बाहों से, खुले दिल से करते हैं। सुनिए इस गीत को।

0: असलियत में हमारी ज़िंदगी सच में सूरज की बाहों में ही है, और इन बाहों में हमारा ये जो दम है ये घुटना जाए, इसलिए ज़रूरी है अपना हम ख्याल ज़रूर रखें। जितने भी नुस्खे, जितने भी घरेलू उपाय इस कार्यक्रम में आपको बताए गए, वो हमारे तमाम श्रोताओं ने अपनाए हैं और उससे फ़ायदा उठाया है। आप अपना ख्याल रखिए, हम यही कहना चाहेंगे इस गर्मी के मौसम में। फ़िलहाल हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में बस इतना ही, आगे दीजिए मोनिका ठाकुर को नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और अब तमाम श्रोता सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं राखी आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, पर उससे पहले आप हमारा फोन नंबर नोट कीजिए। नंबर है
4: 8527449 55। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955।
3: श्रोताओ, आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर गांव की हर घर की कहानी है। कहानी उस बदलाव की है जो हर बच्चे के जीवन में

0: एक दिन आता है, कभी कभी समय से पहले आता है तो कभी कभी समय के बाद, जिसे हम कहते हैं अर्ली पुबर्टी, यानी जब बच्चे का शरीर जल्दी बड़ा होना शुरू कर देता है। 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? गलत खानपान से, मोबाइल व टीवी की आदतों से, या तनाव व सामाजिक डर से। पर सच यह है, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे समझने और सही दिशा देने की जरूरत है। आज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर माता पिता, शिक्षक व समाज मिलकर समझ दिखाएं, तो हर बच्चा ये बदलाव बिना डर और लज्जा के स्वीकार कर सकता है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी में सौंधी खुशबू है पर सोच अब भी पुरानी है।
1: राधा बेटा, सुबह से फिर वही कार्टून लगा लिया, थोड़ा बाहर भी खेल लिया कर, धूप भी जरूरी होती है।
2: माँ बाहर बहुत गर्मी है, मैं बाद में जाऊंगी, अभी मैं वीन देख रही हूँ, फिर चिप्स खाकर स्कूल जाऊंगी।
1: हर रोज वही टीवी, मोबाइल और बाहर खेलने से परहेज। फिर कहती है सिर दर्द करता है, ना फल खाना है ना दूध पीना है, बस बिस्किट, चिप्स, नमकीन और कुरकुरे और नूडल्स, यही खिलाओ।
2: अरे माँ, स्कूल में भी ना सब यही खाते हैं और मुझे भी ना यही अच्छा लगता है। माँ जल्दी आओ।
1: क्या हुआ राधा बेटा, गिर गई क्या? ये खून कहाँ से आया?
2: माँ मुझे नहीं पता, मैं तो बस बाथरूम गई थी, पर कपड़ों पे ही ये लाल निशान, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ।
1: हे ईश्वर, ये तो मुझे वो बात लगती है, पर इतनी छोटी उम्र में, बस 9 साल में ही।
2: कौन सी बात माँ, मैं क्या बीमार हूँ?
1: नहीं, बीमार नहीं, बस अब ना तू बड़ी हो गई है, अब बाहर खेलने मत जाना और किसी को बताना मत।
2: पर माँ, मैं गंदी क्यों हो गई हूँ? कल तक तो सब ठीक था, आज ऐसा क्या हो गया?
1: अरे गंदी नहीं हुई बेटा, पर अब कुछ बातें बदल गई हैं। तू स्कूल मत जाना कुछ दिन, मैं सविता दीदी से पूछती हूँ कि क्या करना है। कौन है?
3: मैं हूँ सविता।
1: आओ सविता दीदी, अंदर आओ। बस राधा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, स्कूल भी नहीं भेजा मैंने।
3: अरे क्या हुआ राधा को, बुखार तो नहीं है?
1: वो असल में राधा को ना, वो बस हो गई है, मतलब पीरियड। पर दीदी ये तो बहुत जल्दी है ना, अभी तो वो 9 साल की है।
3: हाँ मैं समझ सकती हूँ आपकी चिंता, इसे कहते हैं अर्ली प्यूबर्टी, समय से पहले यौवन आना, आजकल बालिकाओं में ये देखने को मिल रहा है।
1: पर इतनी जल्दी कैसे, हमारे समय में तो 14-15 साल में होते थे।
3: बिल्कुल सही, पर वक्त बदल गया है दीदी, हमारे बच्चों का खान पान, जीवन शैली, माहौल, सब कुछ बदल गया है। बच्चे अब बाहर कम खेलते हैं, मोबाइल टीवी ज्यादा देखते हैं, जंक फूड, चिप्स, बर्गर, नूडल्स, बस यही इनकी जिंदगी है। बस इसी वजह से जो उनमें केमिकल होते हैं वो शरीर को जल्दी बड़ा कर देते हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा बढ़ा देते हैं।
1: तो इनके खाने से बदलाव जल्दी आता है?
3: हाँ, सिर्फ खाना ही नहीं, कई बार शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव, नींद की कमी, ये सब भी असर डालती हैं। टीवी या मोबाइल की रोशनी से भी शरीर के हॉर्मोन्स प्रभावित होते हैं, और परिवार में अगर किसी को जल्दी पीरियड्स हुए हैं तो ये आनुवांशिक कारण भी हो सकता है।
1: हे ईश्वर, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतनी बड़ी बात है, राधा तो हमेशा घर पर ही रहती है, बाहर खेलने भी नहीं जाती है, बस मोबाइल, कार्टून, चिप्स, यही सब पसंद है उसे।
3: कोई बात नहीं सीमा जी, आप अब समझ गई ना, जो सुधार करना है वो अब हो सकता है, जब समझ जाते हैं तो

0: उद्धार करना भी आसान होता है। राधा को डराने की नहीं, समझाने की जरूरत है। उसे बताइए, ये बीमारी नहीं है, बल्कि उसके शरीर में प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं।
1: पर दीदी, मैंने तो उसे कह दिया कि मंदिर मत जाना, गलत कहा क्या मैंने?
0: सीमा जी, ये सब पुरानी बातें हैं। लड़कियां गंदी नहीं होती, उस समय बस उन्हें साफ सफाई, सैनिटरी पैड का सही इस्तेमाल और संतुलित आहार की जरूरत होती है। और हाँ, राधा को दूध, हरी सब्जियां, फल, सुबह शाम थोड़ा खेल कूद, ये सब करना बहुत जरूरी है। आप समझाएं उसे।
1: सही कहा दीदी, मैं खुद डरी हुई थी।
0: माँ अगर समझेगी तो बेटी डरेगी नहीं, गर्व से बढ़ेगी।
2: क्या बात है सीमा, आजकल राधा दिखाई नहीं दे रही है, कहीं स्कूल से भागने की आदत तो नहीं पड़ गई इसको?
1: नहीं नहीं काका, वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उसकी।
2: छोटी सी उम्र में बीमारी, अब राधा बड़ी हो गई है।
0: गोपाल काका, ऐसी बातों का मजाक नहीं उड़ाया करते, ये कोई हंसी की बात नहीं है, समझ की बात है।
2: अरे सविता बेटी, मैं तो यूं ही मजाक में बोल देता हूँ, मुझे क्या पता कि बात इतनी गंभीर है।
0: गांव में जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा बदलाव होता है तो लोग चुप रहते हैं या मजाक उड़ाते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा उस बच्ची पर क्या बीतती होगी?
2: ये बात तो आप सही कह रही हैं, हम तो हंसी में कह देते हैं, पर बच्ची को तो डर लगा रहता होगा।
0: बिल्कुल, राधा सिर्फ 9 साल की तो है, ये बदलाव प्राकृतिक है, पर उम्र से पहले आए तो हर किसी को डर लगता है। इसकी वजह कोई किस्मत नहीं, हमारी जीवन शैली है।
2: जीवन शैली मतलब?
0: मतलब आजकल के बच्चे जो बाहर खेलते नहीं हैं, बस दिन भर घर पे रहते हैं, मोबाइल, टीवी, यही इनकी जिंदगी बन गई है। पूरे समय बाहर का खाना खाते हैं, फैक्ट्री वाला खाना खाते हैं जिनमें रसायन होते हैं, और वो हमारे हॉर्मोन्स को जल्दी बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा शरीर जल्दी बड़ा दिखने लगता है।
2: अरे ये तो हमें कभी बताया ही नहीं गया, हम तो सोचते थे ये ईश्वर का खेल है।
0: ईश्वर ने शरीर बनाया है, पर हमें दिमाग तो दिया है ना काका, समझने के लिए। अगर समय से पहले ये बदलाव दिखें तो डरना नहीं चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है।
1: मैं भी डर गई थी पहले, मुझे लगा कुछ अब शगुन हो गया, पर दीदी ने समझाया तो अब मन शांत हुआ है।
2: बेटा, तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगा, बल्कि गांव की और लोगों को भी बताऊंगा। यह शर्म की बात नहीं, ज्ञान की बात है।
0: यही तो चाहिए था काका, अगर गांव में बड़े लोग समझ जाएं, तो लड़कियां भी बिना डर के जी पाएंगी। नमस्ते भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने आए हैं, समय से पहले यौवन, जिसको हम अर्ली प्यूबर्टी भी कहते हैं। आप सबने देखा होगा कई बच्चियां जो 8-9 साल की उम्र की है, उनमें ऐसे बदलाव आने लगते हैं, शरीर का बढ़ना, स्तनों का विकास, मासिक धर्म शुरू हो जाना। पहले ये 13 से 14 साल की उम्र में होता था, पर अब जल्दी हो रहा है। आप जानते हैं क्यों?
2: क्यों
1: क्यों
2: क्यों
1: क्यों?
0: क्योंकि हमारे बच्चों की जीवन शैली, खान पान, दिनचर्या पहले से बहुत बदल गई है।
3: दीदी, इसका इलाज क्या है?
0: देखिए, इलाज से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और समय पर सलाह। अगर आपकी बच्ची जल्दी बड़ी होने लगे या उसके शरीर में जल्दी बदलाव दिखे, तो सबसे पहले डरिए नहीं, शर्माइए भी नहीं, बल्कि डॉक्टर या आशा से बात करिए। साफ सफाई रखिए, पौष्टिक खाना दीजिए और भावनात्मक सहारा दीजिए।
2: अगर दीदी कोई मजाक करे
0: तो उसे समझाइए काका, ये बीमारी नहीं है, शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। लड़कियों को शर्म से नहीं, आत्मविश्वास से जीना सिखाइए। अगर हर घर में माँ बाप खुलकर बात करेंगे तो कोई राधा फिर ना डरेगी और ना रोएगी।
4: दीदी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।
0: हाँ बेटा, जरूर बोलो।

0: जब मुझे वो पहले हुआ था तो मुझे बहुत डर लगा था। माँ ने कहा बाहर नहीं जाना, बाहर मत खेलना, पर मैं अब जाती हूँ। मैं गंदी नहीं हूँ, मैं बस बड़ी हो रही हूँ और बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि दूसरी लड़कियों को भी डरना ना पड़े।
1: राधा मेरी बेटी है और मुझे तुम पर गर्व है। मैं भी हर माँ को यही बताऊंगी कि बेटी को डराए नहीं, समझाए।
2: अरे भाई, अब तो मैं भी गांव में सबको बताऊंगा कि वो कोई शर्म की बात नहीं बल्कि जीवन का नियम है।
3: यही तो असली बदलाव है। जब एक माँ, एक बच्ची और एक काका तीनों मिलकर सोच बदल दें, तो पूरा गांव बदल जाता है। हर माँ बाप, हर काका, हर बहन, हर भाई से मेरी यह गुजारिश है, अगर आपके पास कोई बच्ची या बच्चा उम्र से पहले बदलाव से गुजर रहा है तो उन्हें डराए नहीं, उन्हें छुपाए भी नहीं, पर समझाए और अपनाए। बच्चों को ये खुलकर बताइए कि यह बदलाव प्राकृतिक है और उनका शरीर सुंदर व सामान्य है।
1: अब मैं राधा को हर बात खुले दिल से बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर माँ अपनी बेटी से ऐसे ही बात करे, प्यार से, विश्वास से।
0: मुझे अब शर्म नहीं आती है क्योंकि अब मुझे पता है बड़ी होना कोई गलती नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है।
2: और हाँ, अब मैं गांव में किसी भी बच्ची पर हंसूंगा नहीं।
4: दोस्तों, राधा की कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, उन हजारों की है जो अचानक हुए बदलाव से घबरा जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें पहले से तैयार ही नहीं किया। अर्ली पुबर्टी यानी शरीर का जल्दी बदलना कोई डर की बात नहीं बल्कि समझ की मांग है। जब किसी बच्चे में 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या मानसिक परिणाम आने लगते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हम डरे नहीं बल्कि समझे और संभाले। हमारे खान पान में रसायन, हमारी भाग दौड़ की दिनचर्या में बदलाव, बच्चों का टीवी व मोबाइल पर रहना और तनाव भरा माहौल, ये सब मिलकर इस बदलाव को जल्दी ला सकते हैं। पर अगर माता पिता ध्यान दे तो यही बदलाव स्वस्थ और सामान्य बन सकता है। याद रखिए, बच्चे तब नहीं डरते जब शरीर बदलता है, वे तब डरते हैं जब बड़ों की चुप्पी उन्हें अकेला कर देती है। अगर हम अपने बच्चों से प्यार से खुलकर बात करेंगे तो वो हर सवाल, हर डर हमसे साझा करेंगे और यही है असली शिक्षा। तो आइए आज से ही एक नया प्रण लें कि हर घर में समझ की बात होगी, शर्म की नहीं। हर बच्चा अपने शरीर को डर से नहीं, सम्मान से देखेगा, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को समझ देंगे तो उनका बचपन नहीं छिनेगा बल्कि मजबूत और आत्मविश्वास से भरा भविष्य बनेगा। बदलाव रुक नहीं सकता पर समझ उसे सुंदर बना सकती है। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी ने आपको जरूर प्रोत्साहित किया होगा। आप हमसे फोन व पत्र के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। उसके लिए आप हमारा पता व नंबर नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा नंबर भी लिखिए। नंबर है
5: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955।
4: इसी के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए आप सभी को मुझ राखी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: जब पहली बार गूंजे थे ये शब्द,
2: ये आकाशवाणी है।
1: जब देश नहीं था आजाद, रेडियो था एक चमत्कार, आवाज ही थी जुड़ाव का एक जरिया।
2: 1936 से लेकर 90 वर्ष की सुनहरी यात्रा में
1: आकाशवाणी ने न सिर्फ समाचार सुनाए बल्कि देश की नब्ज को महसूस भी किया।
2: जब देश ने आजादी की सांस ली, आकाशवाणी ने वो पल सुनाया। जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को छुआ, आकाशवाणी ने वो गर्व गुनगुनाया।
3: लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए

0: बहुत ही गर्व की बात है।
1: जब भूकंप, बाढ़, युद्ध या महामारी आए, आकाशवाणी बना विश्वास की आवाज।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ के श्रोताओं को आपके मित्र रदा मुराद का सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे ये विनती करता हूँ कि इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें, इसे अपनी सुरक्षा का सबसे मजबूत तरीका समझें।
3: 90 वर्ष का सफर, अनगिनत यादें, आज भी वही विश्वास, भरोसा, वही अपनापन।
1: ये आकाशवाणी है, हर दौर, हर दिल की आवाज,
3: हमारी और आपकी पहचान। आकाशवाणी, आकाशवाणी।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपने तमाम लिसनर्स के लिए अब लेकर आ गए हैं गैर फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। कार्यक्रम का पहला गीत विशव धालीवाल की आवाज़ में।

0: कार्यक्रम सुरबहार में आज बस इतना ही। आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम संजीवनी में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विनोद बरवाल से रमेश कपूर की बातचीत।
1: संजीवनी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं ताकि आप स्वस्थ रहकर हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी का सफर तय करें। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, इसके कम होने के क्या कारण हैं, इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है और आयुर्वेद में इम्यूनिटी को लेकर किस तरह से उपाय किए जाते हैं, तमाम जानकारियों के साथ हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं डॉक्टर विनोद बरवाल, प्रोफेसर एंड हेड कुमार भृत्य डिपार्टमेंट, धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेक्टर 46।

0: निधिगढ़। डॉक्टर विनोद बरवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि दरअसल आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप किस तरह से देखते हैं?
1: इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर की रोगों के प्रति लड़ने की एक क्षमता है, जिसको कि हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म के तौर के रूप में भी बात करते हैं। हमारा शरीर जो है कितना सक्षम है रोगों से लड़ने के लिए, इसी को हम लोग इम्यूनिटी के रूप में देखते हैं। हमारा शरीर कितने हद तक, कितनी लेवल तक जो है रोगों से निजात पा सकता है, कितना देर तक जो है वो रोगों से लड़ने में कामयाब है, उसी बेस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इम्यूनिटी हमारी अच्छी है कि कम है या बिल्कुल ही पुअर है। जैसे कि अभी पिछले 2-3 सालों में आपने देखा है कि कोविड का जो टाइम था, उस टाइम पे जो है इम्यूनिटी के बारे में काफी चर्चा हुई, क्योंकि जिन लोगों की जो है रोगों से लड़ने की क्षमता कम थी, जो लोग जो हैं जो लो इम्यूनाइज थे, उनको जो है ये कोविड की बीमारी ने जल्दी उनको अपना शिकार बनाया है। तो उसी के बाद से आयुर्वेद की चर्चा हुई, आयुर्वेद को अपलिफ्टमेंट हुई है कि आयुर्वेद में जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो है काफी अच्छी चीजें हैं, काफी अच्छे नुस्खे हैं और काफी अच्छे योग जो है हमारी संहिताओं में हमारे पुराने आचार्यों ने बताए हुए हैं। तो इसीलिए ये इम्यूनिटी का थोड़ा सा ब्रीफ था कि रोगों से लड़ने की जो नेचुरल क्षमता है बॉडी की, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी।
0: जी,
1: इम्यूनिटी जो है बेसिकली हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे एक तो होती है सहज इम्यूनिटी, जो कि हमें बर्थ से मिलती है, नेचुरल इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, जब बच्चा पैदा होता है या जब पेरेंट्स जो है कंसीव करते हैं, तो कंसीव के टाइम से ही पेरेंट्स जो है किस तरह से भोजन कर रहे हैं, कैसे वो रह रहे हैं, कोई उनको बीमारियां तो नहीं है, तो वो जो उनका रहन सहन है उसी से डिसाइड करता है कि बच्चे की प्रोजेनी जो है आगे जब बच्चा डिलीवर होके बाहर आएगा तो उसकी जो इम्यूनिटी कैसी रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी, की जो हमें बाय बर्थ मिलती है। तो बाय बर्थ में हम लोग जैसे बताते हैं, जैसे स्किन है हमारी, चमड़ी है, हमारा जो सलाइवा है, थूक है, या हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेज है जो भोजन पचाने का काम करता है, या हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये हमारा इनेट है, ये हमें बॉर्न से ही मिला, जन्म से ही मिला हुआ है। तो ये रोगों से लड़ने के लिए इनबॉर्न जो इम्यूनिटी है उसको हम लोग सहज बोलते हैं। दूसरी है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड का मतलब है बच्चा पैदा हो गया है, पैदा होने के बाद से जो बीमारियां हमें बाद में बाहर से मिलती हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस, जितने भी केमिकल्स हैं, पॉल्यूशंस हैं, जो हमारे बॉडी के ऊपर जब वो अटैक करते हैं, तो उनको रेसिस्ट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए जो शरीर जो हमारा है कुछ एक एंटीबॉडीज बनाता है उनके अंगेंस्ट, तो उसको बोलते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो उनसे लड़ने के लिए वो बर्थ के बाद होती है। तो इसमें जो है जैसे हम लोग वैक्सीनेशन लगाते हैं, आपने सुना होगा टीकाकरण जो होता है, जो मां का दूध बच्चे को पिलाया जाता है, वो भी एक तरह का अक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरह काम करता है ताकि वो रोगों को होने से बचा सके। तो इस तरह से जो है ये दो तरह की इम्यूनिटी होती है।
0: जी डॉक्टर साहब, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के क्या कारण होते हैं?
1: सबसे पहले हम लोग आहार और विहार से स्टार्ट करते हैं। आहार मतलब जो है हमारा जो मेन जो फूड है, जो कि डायरेक्ट हमारे अंदर बॉडी में जाता है। दूसरा जो है हमारा पानी है। तीसरा जो है विहार, मतलब जो हम डूज एंड डोंट जो एक्टिविटीज है। तो सबसे पहला कारण जो हमारा जो भोजन है, जो भी हमारा भोजन है, अगर वो भोजन जो है साथ में नहीं होगा, बासी भोजन होगा, फ्रेश नहीं होगा, या फिर आजकल हम देख रहे हैं कि फ्राइड चीजें हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं और केमिकल्स जो है फूड में आ गए हैं, कलर्स आ रहे हैं, तो ये जितनी भी चीजें हैं उनसे जो है हमारा जो लीवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो है हैम्पर होता है, डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से जो है हमारी इम्यूनिटी जो है इसमें कम होती है। दूसरा जो कारण है स्मोकिंग, धूम्रपान से जो है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारी सांस लेने की जो प्रणाली है जिसमें हमारे फेफड़े हैं, उसमें जो है इम्यूनिटी जो है कॉम्प्रोमाइज जो फैक्टर है वो लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों की क्षमता जो है सांस लेने की, फूलने की जो है वो कम हो जाती है। तीसरा कारण है अल्कोहल, उसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, लीवर के ऊपर काफी असर पड़ता है, लीवर के एंजाइम्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। चौथा जो कारण है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एक तो हमारा जल का पोल्यूशन है जिसको कि वाटर पोल्यूशन बोलते हैं, एयर पोल्यूशन है और अर्थ पोल्यूशन है, या फिर साउंड पोल्यूशन, ये चार तरह के पोल्यूशन है। इन चारों का जब पोल्यूशन है, उसमें जो मेन जो है वाटर पोल्यूशन है, जिसमें कि डायरेक्ट जो पानी हम लोग पीते हैं, अगर वो पॉल्यूटेड होगा तो उसका कितना ज्यादा असर जो है हमारे बॉडी पे पड़ेगा। उसके आगे जो है जेनेटिकल एक कारण होता है कि जीन्स में कुछ कैरी करते हैं, कि उसकी वजह से भी हमें जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले जो जीन्स होते हैं, कई बार अगर हमारे पेरेंट्स से वो कम मिलते हैं तो उसकी वजह से भी जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कम होता है। या फिर कुछ जो है स्टीरॉयड्स के ऊपर क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, जो कोई पर्सन जो है लंबे टाइम से जो है किसी रोगों से ग्रसित हैं, जैसे कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, या आर्थराइटिस का है, SLE है, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं, उनमें भी जो है इम्यूनिटी जो है कॉम्प्रोमाइज होती है। उन लोगों की इम्यूनिटी जो है नॉर्मल लोगों से जो है बहुत ज्यादा लो होती है और वो प्रोन होते हैं डिसीज को कैप्चर करने के लिए, जैसे कोई कैंसर का मरीज है।

0: कैंसर का मरीज और नॉर्मल मरीज है, अगर जैसे ये सीजन चेंज हुआ है, बारिश का मौसम है, अगर इसमें जो है दोनों पेशेंट एक साथ में एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो लेकिन कैंसर वाला जो मरीज है उसकी इम्यूनिटी जो है काफी ज्यादा जो है लो रहेगी एज कम्पेयर टू, उसकी वजह से जो है बीमारियां जो है उसको जल्दी कैप्चर करती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तमाम जो आपने कारण बताए, इनके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि आज की जो जिंदगी है वो भाग दौड़ की जिंदगी है, बहुत से लोग जो हैं तनाव में रहते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, पैसा कमाने की दौड़ है,
0: बिल्कुल।
1: तो कहीं ना कहीं जो हमारा खराब लाइफ स्टाइल है, क्या वो भी एक कारण बनता है हमारी इम्यूनिटी लो होने का?
0: मैं हाईलाइट करना भूल गया, ये सबसे मेजर कारण है स्ट्रेस जो लेवल है हमारा, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी हपड़ा दफड़ी है लाइफ की, जिसमें कि हमारे पास टाइम की कमी है, और जो है आदमी जो है कोप अप कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी आजीविका के लिए अपना टाइम नहीं दे पा रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नींद की कमी हो गई है, टाइम जो है कम हो गया सोने के लिए। बेसिकली हमें 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन स्ट्रेस इतना ज्यादा है, वर्कलोड इतना ज्यादा है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से जो है वर्किंग आवर्स हमारे चेंज हो गए हैं, हम लोग रात तक काम करते हैं और सुबह लेट उठते हैं, ठीक है, रात को फिर खाना बनाएंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, ताकि हम लोग एनर्जेटिक रह सकें, लेकिन ये जितने भी बिवरेजेज हैं, कॉफी है, चाय है, वो भी जो है डिहाइड्रेशन का काम करती है। तो स्ट्रेस लेवल का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से जो है हमारी इम्यूनिटी जो है डे बाई डे कम हो रही है, और ये बहुत बड़ा कारण है। आजकल बच्चों में भी देखा जा रहा है, बच्चों में जो है स्कूलिंग्स में, एजुकेशन में इतना स्ट्रेस लेवल हो गया है कम्पीट करने के लिए, कि आपने यहाँ इतने मार्क्स लाने हैं, इतना रैंक लेना है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस जो है काफी बच्चों में भी बढ़ गया है, और इम्यूनिटी जो है उनमें बहुत ज्यादा कम पाई जा रही है। जो भी बच्चे हमारे पास, हम ओपीडी देखते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों की जो पेरेंट्स हैं उनकी ये कंप्लेंट होती है कि बच्चा जो है बार बार बीमार हो रहा है, कभी खांसी हो रही है, जुखाम हो रहा है, छींकें आ रही हैं, रनिंग नोज है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन हो गया है, वजन कम हो गया है बच्चे का, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फोकस नहीं कर पा रहा है, उसकी मेमोरी कम हो गई है, याद नहीं कर पा रहा है, और बच्चा जो है फाइनली स्ट्रेस में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। तो इस तरह के केसेस हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं ओपीडी में, और बच्चों में नहीं, बड़ों में भी है ही, आपको पता ही है कि आजकल स्ट्रेस का कितना ज्यादा रोल हो गया है, इसीलिए हम लोग आजकल जो है मेडिटेशन की तरफ फोकस करते हैं, योग की तरफ फोकस करते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि नींद 8 से 10 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, तो नींद का क्या रोल है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में या घटाने में?
0: देखिए, नींद जो है बेसिकली जो हमारे संहिताओं में जो आचार्यों ने बताया हुआ है कि नींद जो है 8 से 10 घंटे की नींद आपने लेनी ही लेनी है, उसमें जो है ब्रेन जो है हमारा रिलैक्स हो जाता है, जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है। हम लोग सोए भी हैं, नींद में भी हैं, अगर हमारी नींद भी 2-3 तरह की बताई हुई है, उसके भी अलग अलग डिवीजन है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। कई बार हम लोग क्या है, सोए हैं, आंखें बंद है, लेकिन हमारा दिमाग है वो चल रहा है, वो बंद नहीं होता है, तो इसलिए डीप स्लीप में जाना बहुत जरूरी है, उसके लिए हमें मेडिटेशन की हेल्प लेनी है। मेडिटेशन से क्या है, आप जितनी देर भी सोएं, ब्रेन जो है आपका बिल्कुल बंद हो जाए, एटलीस्ट रिलैक्स रहे, ताकि जो है आपका जो रेजुविनेशन है ब्रेन से, और जितना भी कंट्रोल है, सेंसेस हैं, वो सारा कुछ आपका अलर्ट रहे और परसेप्टिव रहे।
1: जी डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में और भी जानकारी आपसे लेंगे। यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: मेरा ये एक मूवी थी धर्म कर्म करके, मुकेश जी मेरे काफी फेवरेट रहे, मैं उनके गाने सुनता रहता हूँ, तो उन्हीं का ये गाया हुआ गाना है, और आरडी बर्मन जी इसमें संगीतकार हैं, उन्होंने संगीत दिया है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल।
1: बहुत ही अच्छा गाना है, और आइए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संजीवनी और आज हम रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पर बात कर रहे हैं। तमाम जानकारियों के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनोद बरवाल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेक्टर 46 चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, इस गीत के पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या कारण होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के, तो आप हमें ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि फलां व्यक्ति में या किसी बच्चे में इम्यूनिटी जो है वो कम हो रही है।
1: हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं या बच्चे आते हैं बेसिकली, तो कुछ एक लक्षणों के साथ वो आते हैं। पेरेंट्स जो कंप्लेंट लेके आते हैं कि बच्चे में ये चीजें आ रही हैं, तो उनको हम असेस करके जो है इजीली डायग्नोस कर लेते हैं कि इसकी बच्चे की जो है इम्यूनिटी कम है। तो उनमें से जो मोस्ट कॉमनेस्ट जो कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि बच्चे को जो है बार बार एलर्जिकल प्रॉब्लम होती है। एलर्जिक में जैसे एक ब्रोंकियल एस्थमा भी एक एलर्जिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि खांसी बच्चे को बार बार होना, जुखाम बच्चे को बार बार होना, छींकें लगना, उसका नाक जो है हमेशा बहता हुआ रहता है, गले में खराश रहती है। तो ये कंप्लेंट्स के साथ जो है पेरेंट्स जो है या बच्चा बार बार आता है। मतलब जैसे अभी आया है दिखाने के लिए, 15 दिन के बाद फिर से आएगा, डॉक्टर साहब पहले दवाई दी थी ठीक हो गया, अब जो है फिर से इसको खांसी और जुकाम हो रहा है। तो ये है कि फ्रीक्वेंसी टू विजिट दी ओपीडी इसमें ज्यादा रहती है, तो एक तो पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण जो है जीआईटी प्रॉब्लम, कि बच्चे को भूख नहीं लगती है, बच्चे को भूख नहीं लगती है, ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में फुलावट लग जाती है, कब्ज हो जाती है, या फिर डायरिया, लूज टूल जो है बार बार जो है बच्चा बार बार पोटी जाता है, तो ये दूसरा एक कारण है। तीसरा जो है कि बच्चे का या तो वेट कम हो रहा है या वेट गेन कर रहा है, वो भी एक मेजर कारण है कि बच्चे का वेट गेन हो रहा है या वेट कम हो रहा है। चौथा जो कारण है कि बच्चा स्ट्रेस में रह रहा है, एंजाइटी में है। एंजाइटी में क्या चिड़चिड़ापन हो जाता है बच्चे में, बच्चे का मन नहीं लगता स्टडी करने में, किसी भी काम में, खेलने में मन नहीं लगता है। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ये खेलने भी नहीं जाता है, इसके फ्रेंड्स आते हैं लेकिन ये नहीं जाता है, स्कूल में भी फ्रेंड्स कम बनाता है, जो भी होमवर्क देते हैं, जो भी काम करने के लिए देते हैं उसमें फोकस नहीं कर पा रहा है, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन। और दूसरा जो है फटीग, फटीग का मतलब है कि हमेशा सुस्तीपन रहना, कोई भी काम करने की इच्छा ना होना,
0: थका थका सा रहता है
1: जो है बच्चे में रहती है हमेशा या बड़ों में रहती है। तो ये चार पांच जो कारणों से हम लोग फोकस कर लेते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे कम हुई है या कम हो रही है, तो हम जो है फिर उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में लेके जाते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हमारे पास जो सुविधाएं हैं अवेलेबल आयुर्वेद में, वो हम उनको एडवाइस करते हैं।
0: जी, तो आयुर्वेद में किस तरह से बच्चों की या बड़ों की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है?
1: इसमें देखिए ये कुछ चीजें हैं, आयुर्वेद इसीलिए अच्छा है, इसको आजकल प्रमोट किया जा रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के इसमें बहुत अच्छे और नेचुरल तरीके हैं जो कि और कहीं पे भी हमें नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हमारे आयुर्वेद में संहिताओं में दिनचर्या करके एक वर्ड यूज किया गया है। दिनचर्या का मतलब है कि आप सुबह से लेके रात तक क्या करना है, कैसे करना है, किस वे में करना है, मतलब क्वालिटी वर्क करना है, उसको किस तरीके से करना है, वो सबसे पहले अगर हम डेली टू डे लाइफ में सब लोग अगर उसको अडॉप्ट कर लें तो इम्यूनिटी को और बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा आपका दिनचर्या से। सबसे पहले तो है कि हमें सुबह शुभ मुहूर्त में उठना है, जल्दी उठना है, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड जो हम लोग बोलते ही हैं। एक तो सबसे पहले रात को जल्दी सो जाइए, 8 से 10 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, उसके बाद जो है सुबह जल्दी उठना है आपने। उसके बाद जो है आपका जो डेली का जो रूटीन वर्क है, जैसे फ्रेश हो गए आप, ब्रश कर लिया, टॉयलेट ट्रेनिंग है आपकी, उसके बाद जो है कुछ टाइम के लिए आपने पूजा के लिए निकालना है, कुछ मेडिटेशन कर लीजिए उस टाइम पे, या फिर उसके अलावा वॉक कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज जो है सुबह की जो है, उसमें साइकिलिंग हो गया या ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, कुछ भी हो सकता है उसमें। उसमें थोड़ा अपने ओल्ड फ्रेंड है या जो भी आपका सर्कल है उसके साथ में आधा घंटा निकालिए, उनके साथ वॉक कीजिए, बातें कीजिए, हंसिए, खुश रहिए। उसमें जो है सुबह के टाइम में आपको ब्रेन के लिए जो है सर्कुलेशन जो है ब्लड सप्लाई काफी अच्छी हो जाती है। उसके बाद जो है आपने गंडूस करके एक वर्ड यूज किया हुआ है हमारे यहाँ पे, जिसमें कि ऑयल होता है हमारा मेडिकेटेड ऑयल, उसको जो है आपने मुंह के अंदर थोड़ा सा फील करना होता है और उसको मुंह में घुमाना है, घुमाने के बाद उसको स्पिट कर देना है और उसके बाद गर्म पानी से मुंह को साफ कर लेना है। इससे क्या होता है, जो हमारा इंटरनल जो म्यूकोजा होता है माउथ का, लिप्स के लेयर के जो अंदर का जो हमारा पोर्शन है, टंग हो गया, सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो अच्छी स्ट्रेंथन होती है, ताकि जो भी हम कुछ अगर मान लो कुछ भी मुंह से हम कुछ खाते हैं, कोई बैक्टीरिया

0: वायरस है, कुछ भी पैथोजन एंटर होते हैं तो वो उसको पहला बैरियर वहाँ पे बन जाता है, उसको रोक देता है। तो ये जो है सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि गंडूस कीजिए मॉर्निंग के टाइम पे। दूसरा जो है नाक में जो है कुछ एक ड्रॉप्स डालने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं, उसको नस्य बोलते हैं। और डेली भी दो दो बूंदे हमने मेडिकेटेड ऑयल हमारे पास आयुर्वेद का बना हुआ है, हमारी फार्मेसी का बना होता है, हम लोग यहाँ करते भी हैं और रिकमेंड भी करते हैं बच्चों को भी बड़ों को भी। तो वो दो दो बूंदे जो है दोनों नॉस्ट्रिल्स में आपने सुबह के टाइम पे डालनी है। उस पर जो हमारी जो नेजल मेम्ब्रेन जो है इंटरनल जो है वो स्ट्रांग होती है, वो भी एक तरह का बैरियर का काम करती है पैथोजेंस को रोकने के लिए। उसके बाद जो है कि हमने पंचकर्मा का डेली जो है कुछ एक फुट मसाज कर लीजिए, नहाने से पहले अपने बॉडी के ऊपर ऑयलिंग कर लीजिए, मसाज जिसको कि हम लोग बेसिकली वर्ड यूज करते हैं, अभ्यंग हम आयुर्वेद में यूज करते हैं। नहाने से पहले इस पूरे शरीर पे ऑयल कर दीजिए, हेड मसाज कीजिए, फुट मसाज कीजिए रात को सोने से पहले। तो उसके बाद जो है फिर आपने ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट कभी भी एस्केप मत कीजिए, हैवी ब्रेकफास्ट करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। फिर जो है कुछ एक सीजनल सब्जियां जो हम सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, वो आपने यूज करना है। च्यवनप्राश का यूज हम कर सकते हैं, एक चम्मच जो है सुबह गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। दूध पीते टाइम पे भी हमने ध्यान रखना है कि उसमें हल्दी का यूज करें, गोल्डन मिल्क हम उसको बोलते हैं, आधा चम्मच या एक चम्मच जो है 250 ml या 150 ml दूध में मिक्स करके वो आपने डेली दो टाइम पीना ही पीना है। उसके अलावा जो है प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स जो हमारे यूज होते हैं, मतलब जैसे दही का यूज दिन के टाइम पे कर सकते हैं, लस्सी का यूज कर सकते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो किचन में जो हमारे स्पाइसेस होते हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं, उसका किसी को पता ही नहीं है कि वो कितने मिराकुलस औषधियां हैं
1: जी,
0: और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग जो किचन में जो हमारे स्पाइसेस हैं उसी का यूज कर लें कुकिंग के लिए, खाने के लिए, तो हम कभी बीमार होंगे ही नहीं। जैसे धनिया है, जीरा है, अदरक है, लहसुन है, तुलसी है, मेथी है, मतलब इस तरह की ये चीजें हैं, ये काफी औषधीय गुण वाली चीजें हैं जिनका कि हमें अपनी कुकिंग में खाने में यूज करना चाहिए। उसके अलावा पानी ज्यादा पिए, हाइड्रेट रहें हमेशा, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल खाएं, नट्स खाएं, जैसे पीनट्स है, आमंड है, वॉलनट है, अखरोट है, बादाम है, अंजीर है, इनका यूज करें, तीन चार चार पीस भिगो के रखें, रोज खाएं, उससे आपको काफी अच्छा हेल्प मिलेगी, ब्रेन आपका अच्छा अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे आप लोग, कभी बीमार नहीं होंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे जिंक है, विटामिन डी का यूज करें, जैसे विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, धूप लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। बीच में अगर आप नॉन वेज हैं तो एग भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, फिश ले सकते हैं प्रोटीन डाइट में, या बीच में आप पनीर दूध है या फिर मशरूम ले सकते हैं खाने के लिए। फ्रूट्स में जैसे संतरा, जितने खट्टी चीजें हैं, लेमन है, संतरा है, मौसमी है, ये ले सकते हैं। तो इससे जो है आपकी इम्यूनिटी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं सारे के सारे स्टेबल रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, उससे आपका फिजिक और जो आपका मेंटल है तो दोनों में एक इक्विलिब्रियम रहता है। तो इम्यूनिटी का मतलब ही यही है कि जब आपका फिजिकल और मेंटल वेलबींग दोनों इक्विलिब्रियम है, दोनों का एक साथ इकट्ठा होना जरूरी है, फिजिकल भी आप ठीक रहें और मेंटली भी ठीक रहें
1: जी। आप स्वर्ण प्राशन का भी इस्तेमाल करते हैं
0: जी, जी
1: तो ये स्वर्ण प्राशन क्या है और किस तरह से ये लाभप्रद होता है इम्यूनिटी बढ़ाने में?
0: स्वर्ण प्राशन देखो हमारी संहिताओं में 5000 साल पहले जो है हमारे काश्यप महर्षि हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है, वो पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड ही एक सब्जेक्ट है जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। स्वर्ण प्राशन जो वर्ड है उसमें देखिए स्वर्ण का मतलब होता है गोल्ड, तो गोल्ड को हम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, उसका शोधन करना पड़ता है, उसको प्यूरीफाई करना पड़ता है। तो उसका प्यूरिफिकेशन जो है हम लोग अपनी फार्मेसी में पहले करते हैं, उसकी गोल्ड स्वर्ण भस्म बनाते हैं। उसके साथ में जो है कुछ एक हर्ब्स होती हैं जो कि जैसे शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है, मंडुकपर्णी है, अश्वगंधा है, तुलसी है, वचा है, इन चीजों का एक्सट्रैक्ट मिला के जो है हम लोग स्वर्ण भस्म में ऐड करते हैं। साथ ही उसमें जो है शहद मधु होता है और गाय का घी, उसको मिक्स करके बच्चों को बना के ये चटाने के लिए देते हैं, उसको स्वर्ण प्राशन बोलते हैं। बेसिकली ये जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी अच्छा कारगर है और उसमें काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम लोग जो है पिछले 15 सालों से जो है यहाँ पे धन्वंतरी कॉलेज में जो है ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 15,000 से 20,000 बच्चों को जो है तो ये स्वर्ण प्राशन हम पिला चुके हैं
1: जी। डॉक्टर साहब खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया जाता है स्वर्ण प्राशन?
0: बेसिकली ये मेंशन जो है बच्चों के लिए है, लेकिन हम लोग इसको बड़ों के लिए भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये जो डोजेज हैं इसका और जो टाइम ड्यूरेशन है वो जन्म से लेके 16 साल तक की बच्चों के लिए इसमें मेंशन किया हुआ है। ये जो टाइम पीरियड होता है ये बेसिकली जो है थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज रहती है बॉडी की और माइंड की भी, तो इस डेवलपिंग स्टेज में अगर हम लोग स्वर्ण प्राशन देते हैं तो ये बच्चों में जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उनकी जो ग्रोथ है उसको बूस्टअप करता है, जो उनके जो ब्रेन डेवलप हो रहा है, जो डेवलपिंग स्टेज ऑफ द ब्रेन है उसको इन्हांस करता है, उसकी क्वालिटी को रिफाइन करता है और उसकी जो फिजिकल और जो मेंटल ग्रोथ है उसको बढ़ाता है। तो इसलिए

0: मैंडेट जो है इस एज में है, क्योंकि ये अभी धातु जो होते हैं, हमारे टिश्यूज होते हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी अपरिपक्व अवस्था है, मतलब ये अभी मैच्योर नहीं होती है। 16 और 18 के बाद जो है थोड़ा सा हम मैच्योर हो जाते हैं, तो इसलिए उसमें जो इम्यूनिटी अगर दे सकते हैं हम लोग, लेकिन उतना अच्छे लेवल पे काम नहीं करता है जितना कि ये इस पर्टिकुलर एज में काम करता है।
1: जी, तो डोज क्या रहती है, किस तरह से बच्चों को देते हैं?
0: देखो, अलग अलग कंपनी जो है ये बना रही हैं, काफी सारी कंपनी मार्केट में है जो कि स्वर्ण प्राशन के ऊपर काम कर रही हैं, उनको बना रही हैं। हम लोग जो, मैं अपनी बात करूंगा, हम लोग जो है अपनी धन्वंतरी जो कॉलेज है उसकी हमारी खुद की फार्मेसी है इन हाउस, उसी में ये बनाते हैं, सारा सुपरविजन में बनता है, सारे फार्मेसिस्ट हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, खुद हम लोग जो है स्वर्ण को प्यूरिफाई करते हैं, उसके बाद जो है अपनी जो हर्ब्स हैं फ्रेश हर्ब्स लाके लेके आते हैं, गाय का शुद्ध घी लेके आते हैं, शहद अच्छी क्वालिटी का लेके आते हैं और वो बच्चों को चटाते हैं। इसको ड्रॉप्स फॉर्म में भी हम लोग दे सकते हैं, तो ड्रॉप्स फॉर्म में अगर हम देते हैं तो बच्चों को 2 बूंद से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि बच्चे अभी नए पैदा हुए न्यू बॉर्न बेबीज हैं, और उसका जो डोज है फिर जैसे जैसे बढ़ा के उसको 1 ml से 2 ml तक हम लोग बच्चे को देते हैं। और जो इसका जो ड्यूरेशन जो बताया हुआ है, इसको मैक्सिमम हम लोगों ने 3 महीने तक लगातार देना है और मैक्सिमम 6 महीने तक लगातार देना है, जो कि हमारे संहिताओं में जो मेंशन किया हुआ है कि अगर बच्चे को हम 3 महीने तक लगातार ये स्वर्ण प्राशन देते हैं तो बच्चे की जो मेमोरी है, जो इंटेलिजेंस लेवल है, जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है। और अगर लगातार हम 6 महीने तक अगर देते हैं बच्चे को, तो बच्चे को श्रुतधर करके एक वर्ड यूज किया उन्होंने संस्कृत का, श्रुतधर का मतलब है कि जो भी वो बच्चा सुनता है कहीं से भी कुछ भी, उसको इमिडिएटली उसको मेमोराइज हो जाता है और रिकॉल हो जाता है। जब भी आप कभी भी उससे पूछेंगे तो ही विल बी दैट मच इंटेलेक्चुअल, उसकी जो मेमोरी है, रिकॉलिंग जो पावर है वो बहुत अच्छी बढ़ जाती है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है। तो ये जो है पर्टिकुलर डोज है, हम लोग जो यहाँ पे हैं डेली नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग मंथ में एक बार देते हैं, मंथ में एक बार, जो जिस दिन जो हम लोग डे डिसाइड करते हैं उसको पुष्य नक्षत्र बोलते हैं। पुष्य नक्षत्र बेसिकली जो है हमारी संहिताओं में जो नक्षत्र, इसको काफी ऑस्पिशियस माना हुआ, काफी पवित्र नक्षत्र है, कि इस टाइम पे हम जो भी औषधियां देते हैं उनके जो गुण है औषधियों के, वो काफी अच्छे बढ़ जाते हैं, रिफाइंड हो जाते हैं, और उसको शुभ माना गया है, तो इसलिए हम लोग ये 27 डेज में एक बार आता है, उस दिन जो है बच्चों को पिलाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से बताया कि स्वर्ण प्राशन जब छोटे बच्चों को दिया जाता है तो उनकी ग्रास्पिंग पावर जो है वो मजबूत हो जाती है, इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है।
0: जी, जी जी,
1: तो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर हैं, तो उनको अगर स्वर्ण प्राशन दिया जाए तो उनको काफी लाभ हो सकता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास पूरा डाटा है, हम लोगों ने पूरा रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जो हमारे पास 12,000 से 15,000 के बीच के जो बच्चे हम लोग अब तक दिया हुआ है, और अभी भी हम लोग डेली देते ही हैं, हर मंथ में हमारे बच्चे, अभी 31 मार्च को दिया हुआ है हमने। तो हमने जो देखा है कि इसमें 3-4 चीजें हैं, देखिए, एक तो जो बच्चों की जो फ्रीक्वेंसी है जो हॉस्पिटल को विजिट करने की है, वो काफी ज्यादा कम हुई है, मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पेरेंट्स से हम लोगों ने फीडबैक लिया हुआ है कि पहले बच्चे को 15-20 दिन में या 1 महीने में जाना ही था पीडियाट्रिशियन के बाद दिखाने के लिए, बच्चे को खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है बार बार, या फिर छींकें आ रही हैं, स्नीजिंग हो रही है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 महीने से 3 या 4 महीने हो गई है, अब बच्चा बीमार कम पड़ रहा है। दूसरा जो है डाइजेस्टिव में बड़ा अच्छा रिजल्ट हमें आ रहा है, कि बच्चे को जो गैस फॉर्मेशन थी, भूख नहीं लगती थी, चिड़चिड़ापन था, कब्ज की शिकायत बच्चों को रहती है, खाना नहीं खाते हैं, तो उसमें काफी मिराकुलस रिजल्ट है कि बच्चे की ये सारी कंप्लेंट दूर हो गई है। तीसरा जो है एज ए एंटी एलर्जिक, जो ब्रोंकियल अस्थमा के कुछ एक बच्चे हमारे पास हैं, उनको हमने ये दिया हुआ है, तो उसमें जो है काफी अच्छे रिजल्ट हैं, जो पहले जैसे उनको इनहेलर की जरूरत पड़ जाती थी कई बार जब उनको अटैक पड़ता है कुछ एक जैसे सीजन में, विंटर में, बारिश के टाइम पे, तो उसमें भी काफी अच्छे हमें रिजल्ट मिले। स्किन डिसऑर्डर्स में जिनको स्किन की प्रॉब्लम बार बार होती है, उसमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और बच्चों की जो मेमोरी जो लेवल है, पढ़ने की जो क्षमता है और याददाश्त की जो क्षमता है, उसमें भी काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। इसके अलावा जो कुछ एक स्पेशल चाइल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज के बच्चे होते हैं, या कुछ एक सिंड्रोम जैसे होते हैं, या फिर ऑटिज्म एक बीमारी है, ADHD की प्रॉब्लम है, जिसमें कि बच्चा जो है हाइपर एक्टिव रहता है, थोड़ा सा मानसिक तौर पे वो जो है उसका विकास कम होता है, डिलेड माइलस्टोन है, जिसमें कि बच्चा नॉर्मल पर्टिकुलर एज पे जो होता है उसमें लंबा खींच जाता है, जैसे 6 महीने में बच्चे ने बैठना है, स्टार्ट करना है, तो वो 1 साल में करता है, तो ऐसे बच्चों में भी हम लोगों ने काफी इसमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं और पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं हमें, और ऐसे काफी बच्चे हमारे पास अभी चल भी।
1: जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आज बहुत से हमारे सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप हमारे सभी सुनने वालों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, खास तौर पर अगर बच्चों की बात करें तो?
0: बच्चों की बात करें बेसिकली तो ये है कि डिसिप्लिन रहें, सबसे जो मूल मंत्र है, डिसिप्लिन लाइफ का मतलब है कि उसमें सब कुछ आ जाता है। सुबह से लेकर रात तक आपने जो भी करना है दैट शुड बी डिसिप्लिन

0: कैलकुलेटेड कितना खाना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, एक टाइम टेबल अपना बनाएं लाइफ का। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे और जो है डेडिकेटेड रहेंगे और पॉजिटिव रहें हमेशा लाइफ के प्रति, तो उससे जो है हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ सकती है, कभी भी आप जो है इम्यूनिटी कम नहीं होगी। दूसरी जो बात है कि फ्रेश खाएं, सीजनल खाएं, सब्जियां हों, फ्रूट्स हों, नट्स हों, वो डेली यूज करें, दूध का प्रयोग करें, प्रोटीन डाइट अपना साथ में लेते रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें, कोई भी एक जो आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व रहें, कोई भी इंडोर है या फिर आउटडोर एक्टिविटी है जिसमें कि आपको अच्छा फील हो, तो कोई ना कोई जो है एक एक्टिविटी जरूर रखें, चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा समय जरूर बिताएं, उसके साथ हंसी मजाक, और अपने पेरेंट्स के साथ जो है अपनी जो भी चीजें हैं स्कूल की या जो भी चीजें हैं उनको डिस्कस जरूर करें उनको एज ए, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को एज ए फ्रेंडली ट्रीट करें। इम्यूनिटी जो है एक दिन में नहीं बढ़ती है, ये एक तरह का लाइफ प्रोसेस है जिसमें कि सुबह से लेकर रात तक आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, वो सारा ही इम्पैक्ट जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि कुछ एक हम आपको मेडिसिन देंगे और आपकी इमीडिएटली इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये एक तरह का तरीका है जिसमें कि आपका खाना भी है, आप कैसे रहते हैं, आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपकी सोच कैसी है, वो सारी चीजें जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने में रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए मेरा यही गुजारिश है सभी से कि पॉजिटिव रहें, फिट रहें, एक्टिव रहें।
1: जी डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, आपने संजीवनी कार्यक्रम में रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज संजीवनी कार्यक्रम में हम रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बात कर रहे थे। हमारे आज के मेहमान थे डॉक्टर विनोद बरवाल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेक्टर 46, चंडीगढ़। अब आज का संजीवनी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संजीवनी। ये आकाशवाणी है और आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को

0: सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50 27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय हो गया है कार्यक्रम यादों की महफिल का, जिसे हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
2: आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में हर प्रतिदिन हम सजाकर लाते हैं यादों की महफिल किसी एक खूबसूरत सी याद के साथ। तो आइए सुनते हैं आज के यादों की महफिल कार्यक्रम के इस खूबसूरत से नगमे को।

हम सुन रहे थे छोटी सी बात फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ और योगेश के बोलों से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा। आज हम सुनवा रहे हैं गीतकार योगेश की कलम से निकले हुए गीतों को।

हम सुन रहे थे ये गीत आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में, योगेश के बोल सलिल चौधरी के संगीत के साथ। अग्नि परीक्षा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ सुनते हैं गीत।

हम सुन रहे थे अग्नि परीक्षा फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में अधूरा आदमी फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, योगेश के बोल हैं, राहुल देवर्मन का है संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है।

0: अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।

0: हम सुन रहे थे रजनीकंदा फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में योगेश के बोलों के साथ सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

हम सुन रहे थे मंजिल फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और आरडी वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हमने यादें सजाई हैं योगेश की कलम से निकले हुए गीतों के साथ। अगला गीत हम सुनने वाले हैं किससे किसी से ना कहना फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, योगेश के बोल है, बप्पी लहरी का है संगीत।

हम सुन रहे थे अपने पराये फिल्म से यशुदास आशा भोसले की आवाज में योगेश के बोलों को, जिसे बप्पी लहरी ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, योगेश के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है, फिल्म है चालबाज।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का एक बज चुका है, अब जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में 1:05 पर, पहले हिंदी में हमारे केंद्र से। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए। यही क्रम रहेगा शाम 6:10 पर, पहले हिंदी में, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दोपहर 2:15 पर, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर समाचार संध्या, और रात 11 बजे। स्पॉन्सर प्रोग्राम आप सुनेंगे लम्हे शाम 5:20 पर, और 5:30 स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। पंजाबी गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 6:30 पर, शाम 7:45 पर। मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद आपके लिए पंजाबी गाने पेश किए जाएंगे। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए सुरसांझ कार्यक्रम में कुछ पंजाबी गाने।

दोपहर 1:15 पर और शाम 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। अब आपको जानकारी दे दें उन कार्यक्रमों की जो विविध भारती मुंबई से रिले किए जाते हैं। सुरीला सफर प्रोग्राम आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। 2 बजे प्रोग्राम होगा त्रिवेणी, 2:30 बजे सदाबहार नगमे। तीन बजे प्रोग्राम सखी सहेली महिलाओं का ये कार्यक्रम होता है। 4 में शाम 4 बजे आज के मेहमान प्रोग्राम आप सुनेंगे। शाम 7 बजे फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम में फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। रात 8 बजे प्रोग्राम हवा महल में सुनिए नाटक यादों की परछाइयां भाग 3, लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ।

आज के फनकार प्रोग्राम आप सुनेंगे रात 9:30 बजे और आज का ये कार्यक्रम फिल्मकार सुनील दत्त पर केंद्रित है। 10 बजे सुनिए प्रोग्राम छाया गीत, 8:15 पर प्रोग्राम चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए। ये थी जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की, कुछ जो हमारे यहाँ से आपके लिए पेश किए जाते हैं और कुछ विविध भारती मुंबई से जो रिले किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 1:05 होने को है, पहले सुनिए प्रादेशिक समाचार हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जालंधर से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डिब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे के क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर, पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल है, जिनकी कुल क्षमता 2,500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1,200 किलोवाट है। यह रेल शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110

0: 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली DEMU रेलगाड़ी हरियाणा को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली यह रेलगाड़ी न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल संरचना के विकास की गवाह बनेगी बल्कि इतिहास भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की बचत की दिशा में और भविष्य की परियोजनाओं को देखते हुए यह गाड़ी मील का पत्थर साबित होगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज भिवानी, तोशाम व कैरू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। फरीदाबाद स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए एक 3 वर्षीय बच्चे में दुर्लभ बीमारी विस्कॉट एल्ट्रिच सिंड्रोम का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। यह ESIC स्वास्थ्य प्रणाली में इस प्रकार का पहला सफल उपचार बताया जा रहा है। विस्कॉट एल्ट्रिच सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवांशिक प्रतिरक्षा संबंधी बीमारी है जिसमें बच्चों को बार बार संक्रमण, त्वचा रोग, प्लेटलेट्स की कमी और रक्तस्राव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शाहबाद नगर पालिका ने सरकारी फीस तय समय सीमा के भीतर जमा न करवाने वाले 4 ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें काली सूची में डाल दिया है। इसमें SS सहकारी सोसाइटी सहित अन्य ठेकेदार शामिल हैं। नगर पालिका के सचिव बांबुल ने बताया कि संबंधित ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय के भीतर सरकारी फीस जमा नहीं करवाई गई थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि काली सूची में डाले गए ठेकेदार नगरपालिका के किसी भी टेंडर के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: खबरां। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी गुरविंदर सिंह सहोता तो प्रादेशिक खबरां सुनो। देश दे वख-वख हिस्सों च वध रहे तापमान दे मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकां नूं वध तों वध सावधानियां वरतण दी अपील कीती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने सारिआं नूं अपने आप नूं हाइड्रेट रखण ते घरां तों बाहर निकलदे समें अपने नाल पानी रखण दी सलाह दित्ती है। उन्हां अजिहे मौसम विच सारिआं नूं परिवार अते अजीज़ां दे संपर्क विच रहण ते उन्हां दा हाल चाल पुछण लई वी कहा। उन्हां लोकां नूं बहुत सारा पानी पीण दी सलाह दिंदिआं दुपहर वेले घर तों बाहर निकलण तों गुरेज़ करन लई वी कहा है। उन्हां घरां, बालकोनियां, छत्तां, दुकानां जां दफ्तरां दे बाहर जानवरां ते पंछियां नूं ध्यान विच रखदे होए पानी नाल भरिआ इक छोटा भांडा रखण दी वी सलाह दित्ती। श्री मोदी ने उन्हां लोकां दी जतनां दी वी शलाघा कीती जो अपने घरां ते दुकानां दे बाहर घड़िआं विच पानी रखदे ने तां जो कोई वी प्यासा व्यक्ति उस चों पानी पी सके। प्रधानमंत्री ने सारिआं नूं इन्हां मुश्किल दिनां विच पूरी संवेदनशीलता ते हमदर्दी नाल इक दूजे दा ध्यान रखण दी अपील कीती है। पिछले कई दिनों तों जबरदस्त गर्मी का सामना कर रहे पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ विच आउण वाले दिनां विच मौसम विच बदलाव आउण दी खुशखबरी है। चंडीगढ़ स्थित भारतीय मौसम विभाग ने मौसम विच महत्वपूर्ण राहत की भविखबाणी करदिआं कल तों मई के अंत तक तेज़ बारिश, गरज, कुछ थावां ते गड़ेमारी अते 60 तों 70 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार नाल चलण, तेज़ हवावां चलण दे यैलो ते ओरेंज अलर्ट जारी कीते ने। इस दौरान अज दोवां सूबिआं ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच मौसम गर्म रहेगा। पिछले 24 घंटे में पंजाब विच बठिंडा 45.8 डिग्री सैलसीयस नाल सब तों गर्म रहा अते हरियाणा के सिरसा विच वध तों वध तापमान 46 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ विच भी वध तों वध तापमान 41 डिग्री सैलसीयस ताम रहा। कल संपन्न हुई पंजाब दी 8 नगर निगमां, 75 नगर कौंसलां अते 19 नगर पंचायतां दीआं चोणां लई कुल 63.94 फीसदी वोटां पईआं। हालांकि इस दौरान विरोधी पार्टियां समर्थकों विचकार कुछ झड़पां हुईआं पर राज चोण कमिशन ने पुष्टि की कि पोलिंग प्रक्रिया वड्डे पद्धर ते शांतिपूर्ण रही। कुल

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: इस समय दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। अब बारी है फिल्म संगीत की। आज फिल्म संगीत में हम आपके लिए कुछ फिल्मी प्रार्थनाएं चुनकर लाए हैं। परम शक्ति की याद में सजदा करती हुई, आइए सबसे पहले हम आपको सुई धागा फिल्म से एक प्रार्थना सुनवा दें। रौनकिनी गुप्ता की आवाज में ये रचना है, सुनिए।

रॉनकिनी गुप्ता की आवाज में अभी आपने ये प्रार्थना सुनी। ये फिल्म थी सुई धागा। और अब सुनी ये अगली प्रार्थना। फिल्म है बिग ब्रदर

अभी आपने उदित नारायण, अलका याग्निक और रूप कुमार राठौर की आवाजों में ये प्रार्थना सुनी बिग ब्रदर इस फिल्म से। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत विविध भारती चंडीगढ़ से, और फिल्म संगीत में आज कुछ फिल्मी प्रार्थनाएं हम शामिल कर रहे हैं, और आखिर में अंकुश फिल्म से ये प्रार्थना।

अभी आपने अंकुश फिल्म से ये प्रार्थना सुनी। आवाजें थीं पुष्पा, पूर्णिमा और साथियों की। आज के फिल्म संगीत में हमने आपके लिए पेश की कुछ फिल्मी प्रार्थनाएं। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई हमारे अगले प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है सुरीला सफर।
2: और हमारे श्रोता थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि बार बार ये गीत सुनाया जा रहा है, क्षमा चाहेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे कि नए गीतों को लेकर आपके बीच आए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वैसा कोई और प्रेम नहीं होता। माता पिता के प्यार से समझाने के लिए आपको स्वयं बच्चों का पालन पोषण करना होगा। बच्चे अपने माता पिता से मुस्कुराना सीखते हैं। मेरे हीरो मेरे माता पिता हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, बड़ा आनंद आया इस बात को पढ़ने के बाद में हमें। और इसके साथ ही हमारे सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छे से जुड़कर बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं, उसके लिए भी हम सबकी तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हाथ एक दान से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, किसी को कुछ दो

ना दो, पर दो शब्द, एक प्यार भरी मुस्कान दे दो किसी को, अगर किसी को, और अगर किसी का कुछ काम करो तो ये भावना ना हो कि वक्त पड़ने पर वह हमारे लिए काम आएगा, बल्कि ऐसा कहो कि किसी का बुरा वक्त आए ही ना। कितनी बढ़िया सीख आपको मिली है आपके जीवन में आपके गुरु के हाथों से। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि विदी जी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई हमारे घर आता है और जब वह जाने लगी तो दरवाजे तक उसके साथ जाकर उसे विदा करूं, जिसे मैं आज तक निभा रही हूं। जी, आजकल होता है कि कोई निकलता है और हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर पहले ऐसा था कि जब तक वह दिखना बंद ना हो जाए तब तक हम उसे विदा करते थे। कितनी अच्छी बात थी ना। इसके साथ हमारे श्रोता कहते हैं कि मेरी माता ने मुझसे कहा था कि किसी मजदूर का एक पैसा भी मत रखो, हो सके तो ज्यादा दे देना। मैं इस बात को आज तक अमल में लाता हूँ, कभी किसी मजदूर या श्रमिक का कोई पैसा नहीं रखता हूँ। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वे कभी अलग ना हो पाए, ऐसा ही रहे। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी की हाय मत लो, यह सिखाया गया है इनके पिताजी के द्वारा। हमेशा हमारे पापा तो हमेशा कहते थे, एक समय के पाबंद रहो, तरक्की उन्नति सदैव करोगे। बिल्कुल सही बात। एक और पिताजी कहा करते थे, किसी से मत डरो, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात कहते थे। डरना तो बहुत गलत चीज है शायद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि उनके जो जीवन में सीख है माता पिता के संस्कारों से टिकी है। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हारे शब्दों में किसी का रूह आना आहत हो, मेरी आत्मा में बसी है ये बात, वही पिता का अडिग मंत्र, व्यापार हो या जीवन, ईमानदारी ही एकमात्र धर्म है, मेरी राह का दीपक। आज जो भी हूं, इन दो पवित्र विरासतों की बदौलत हूं, इन्हीं के प्रकाश से अपना जीवन जी रहे हूं। बहुत सही बात कही है पिताजी ने। कहा था, बेटी किसी की बात पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, फिर तुम आत्मविश्वास को जीत जाओगी। और विश्वास शब्द हमारे इस इबारत में भी है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनके नाना जी ने उन्हें सिखाया था, अंतिम समय में सीख गले लगाकर सीख दी थी कि ये संसार कुछ भी नहीं है, कर्म ही प्रधान है, सभी को साथ में लेकर चलना, किसी से भी जलन मत रखना, वो दिन मेरे लिए बहुत अहम रखता है। ऐसे ही जीवन में अहम रखते हैं ये सारी बातें, और ये ऐसे ही बनी रहे आप सबके साथ। मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ, और उस गीत के साथ में मैं एक प्रश्न और यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ, और वो प्रश्न ये है, आज तक हमने कई लोगों के लिए मदद की होगी, कभी कोई ऐसी मदद जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई और आत्मा में सुकून, बताइएगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी को कुछ देकर हमारा पेट भर गया, ऐसा कब आपके साथ घटित हुआ था, जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत हम आपको सौंपने जा रहे हैं, ये गीत मैं जो जिस फिल्म से लिया गया, उस फिल्म का नाम आपको बता देना है। और ये तीन प्रश्न आपके साथ चल रहे हैं, उल्टा सीधा वाला, आपके माता पिता की सीख वाला, और कोई ऐसी मदद जिससे आत्मा की भूख मर गई हो, थोड़े समय के लिए ही सही।

हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों से सजे हुए शंकर जय किशन के संगीत के साथ इस प्यारे से खूबसूरत से नायाब से गीत को जो फिल्म अंदाज से लिया गया है। और यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है और आप सबने बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हमारे एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूँ, क्या चल रहा है बताइएगा उल्टा सीधा। तो हमने एक प्रश्न कहा था कि जैसे राही हीरा, राही का उल्टा होता है हीरा और उसका कोई अर्थ भी होता है, ऐसे ही कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में आए तो आप सुझा सकते हैं। साथ ही हमने एक और प्रश्न पूछा कि माता पिता की सीख आप बताइए और ऐसा कुछ जो आपने किया है और आपको बड़ा सुकून मिला है उसे भी सबके साथ साझा कीजिए। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं, गर्मी बहुत है, सच बात है, हम तो पानी लेकर पी सकते हैं, कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर वो बेचारे अब उध कहाँ जाएंगे, उनकी मदद भी तो हमें ही करनी है ना, क्योंकि उनके जंगलों को साफ करके, उनकी नदियों को पाट कर, उनके समंदर को पाट कर हम उनकी जगह पर रहने लगे हैं, तो इस बात का ख्याल हमें ही उनके लिए रखना होगा। तो हम सभी अगर ख्याल रखें तो कितना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोना बड़ा कीमती है, सोना अर्थात नींद भी बहुत कीमती है, क्या बात है, बहुत बढ़िया शब्द दिया सोना सोना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विधि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत थक जाती थी, ससुराल में बहुत कम बहुत काम करना पड़ता था, तो मेरी माँ कहती थी कि काम करने से इंसान और मजबूत होता है, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता था, तो पापा कहते थे कि थोड़ा सोने में से वक्त कम कर दो, पढ़ाई का वक्त निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल में चाह होनी चाहिए, बस दिल की चाह पूरी करते जाइए। और हमने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंदाज फिल्म मोटरसाइकिल पर हेमा मालिनी को बॉम्बे की मुंबई की सड़कों पर गाते हुए घुमा रहे हैं राजेश खन्ना। बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि जब वह अपनी कॉलोनी गली से निकले तो हर आदमी आपकी इज्जत करे, और वह भी किसी डर या दौलतमंद होने के कारण नहीं बल्कि व्यवहार और नम्रता के कारण। कितनी अच्छी बात लिखी है। एक और श्रोता ने लिखा कि कोई भी काम छुपकर नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया। कितनी बड़ी सीख सिखा गए, छुपकर नहीं करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं।

जिसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे आप किस तरह से जी रहे हैं आप पर निर्भर करता है। जिंदगी सहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। कितनी अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता जी पिताजी के गुजर जाने के बाद इनका भाई जो है वो पंडिताई करते रहे हैं, तो गांव में 3 बच्चों के साथ रह रहे थे और वो शहर में, और जब विकट स्थिति विश्व की आई थी उस समय रोजगार के अभाव में संकट था, तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी और आज वह संपन्न है, पर उनकी बात नहीं भूला। बहुत सही बात है, मदद करने से जो

इशू की आई थी उस समय रोजगार के अभाव में, रोजगार का के अभाव में संकट था, तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी और आज वह संपन्न है, पर उनकी बात नहीं भूला। बहुत सही बात है, मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, खुशी कहीं नहीं होती। और मैं हमेशा करती रहती हूँ, कभी टीचर्स की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, इंसान को बराबर समझती हूँ। कभी कोई भी हो, सबकी मदद करनी चाहिए, बस इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हैं। मदद जरूर करिए मगर निस्वार्थ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। ये हमारे श्रोता कह रहे हैं, पुराने कपड़े, पुराना सामान, बच्चों के खिलौने आदि, जो कुछ हमारे काम का नहीं है, हम तो अनाथ आश्रम में दे आते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, बेचारों के माता पिता नहीं है, किसी बहाने उनके माँ बाप बन जाए तो उनको भी खुशी होगी। हमारे श्रोता ने लिखा कि उनके गुरु जी कहा करते हैं, कीरत करो अर्थात कीर्तन सत्संग करो, नाम जपो प्रभु जी का, वाहेगुरु जी का नाम जपते रहो, मंड रखो यानी मिल बांट कर खाओ, और इनके पिताजी ने भी यही सिखाया है इनको। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बात अजीब लग सकती है पर मेरे पिताजी मेरे से इसलिए नाराज रहते थे कि मैं हमेशा ईमानदारी सच्चाई का साथ देती हूँ। मैं 51 साल की हूँ और लोग मुझे अभी भी बेवकूफ समझते हैं। नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले का साथ हमेशा उसका ईश्वर जरूर देता है, तो साथ देते रहिए, अच्छी बात है। और चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारी श्रोता ने एक लिखा है कि मेरी माँ ने सिखा है कोई कुछ भी बोले उसे मन पर नहीं लेना, हमेशा भूल जाओ, यही मानसिकता रखना। हमारे एक श्रोता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है, उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखें भी आंखों के बैंक में डोनेट कर दी हैं, आईज भी आईज बैंक में डोनेट कर दी हैं। कितना अच्छा काम किया है, आपके बाद भी आपकी आंखें ये दुनिया देख सकेंगी। हमारे श्रोता लिखते हैं एक और, चाहे थोड़ा खाओ लेकिन जो खाओ वो अच्छा खाओ, ये बात पिताजी कहते थे और हमेशा हमें याद रहती है। बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर आप सब देने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे एक श्रोता का है, और वह प्रश्न ये है, आज बच्चों में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या हम माता पिता जिम्मेदार नहीं हैं? जरा इसका उत्तर आप दीजिएगा, और तब तक सुनिए अगला गीत, और अगले गीत में बता दीजिए कि इसके गायक कलाकार कौन है, गायक कलाकारों के नाम बताइए, और बताइए क्या बच्चों में की जो संस्कार अगर कम होते हैं तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं, बताइएगा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और लीला मिश्रा को जी को एक ईसाई वाला रोल किया, अमोल पालेकर और टीना जी के प्रेम चल रहा है, डेविड बूढ़ा मस्ती ले रहा है, लीला मिश्रा जी गजब ईसाई कल्चर है। जी बिल्कुल बहुत सही बात है। और अब चलते हैं हम हमारे संदेशों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और जल्दी जल्दी से हम हमारे संदेशों को पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है सुरीला सफर का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता नहीं वस्तुतः नैतिक मूल्य गिरने का कारण स्वयं बालक का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है आज के जनरेशन में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण हर माता पिता हैं क्योंकि हम उन्हें खर्च का पैसा दिया है, मोबाइल दिया, अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने अपने संस्कार हमारे गुरुओं के साथ के बारे में बैठकर शिक्षा नहीं दी है। घरों में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को रखें इस बात की वो सलाह देते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले जिम्मेदार हुआ करते हैं, समाज या माहौल उसके बाद में, क्योंकि पक्षी अपने चूजे को पंख निकल जाने से पहले तक पालता है और जब पंख लग जाए तो उसके बाद वह आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा। पैदा होते ही शिशु के हाथ में मोबाइल आ जाता है तो अपने हितों के चलते ऐसे में किसको दोष दें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं मेरी मम्मी बोलती थी जहां काड़ वहां हड़ा बाड़, जो आपके पास है उसकी जरूरत के हिसाब से खर्च करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ईश्वर कभी कमी नहीं आने देते। ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातों को लेकर इसमें लिखा है। और इसके साथ ही अभी जो हम चल रहे हैं उनमें हमने दो शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी, तो राख का खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का दो अर्थ होते हैं, एक होता है सीढ़ियां और एक होता है जीवन। एक और श्रोता ने लिखा है नवजीवन का उल्टा सीधा दोनों एक जैसा होता है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया हवा, वाह। एक ने लिखा इस गर्मी में कोई हवा कर दे तो मुंह से वाह निकल जाती है। जी मन नम, हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है। मन मन यानी चंचलता का प्रेरक है, तो अगर नम है तो आर्द्रता के लिए कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने। इसके साथ हमारे एक श्रोता ने मन की बात लिख दी कि बहन जब ससुराल जाती है तो भाई को रोना आता है, और शायद अब वही समय वही काल आ रहा है कि बहनें अपने अपने ससुराल जाने की कोशिश करने लगी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है नाम मना। कई लोग होते हैं जो अपने नाम को बताने के लिए मना करते हैं और शायद वही सही मायने में बड़ी

श्रोता होते हैं, बड़े कार्य को करने वाले होते हैं, और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं बस सब सब मिलकर बस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है बहुत सारी चीजें। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको खुश करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने बात लिखी, मेरे पति देव को हमेशा मदद करने की आदत थी, एक बार उनके मित्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मेरे पति ने उन्हें फोटो स्टेट मशीन खरीद कर दिया। आज बात को 20 साल हो गए, लेकिन उनकी माँ इस बात को याद करके कभी धन्यवाद देना नहीं भूलती है। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव, अत्यधिक लाड प्यार के कारण माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसके अलावा माता पिता का आपस का व्यवहार और घर का माहौल सीधा बच्चों पर असर डालता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नींव की कमी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए, और आज के कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सौंपते हैं। बस एक प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। साथ दीजिए, हाथ दीजिए, और ये जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

नमस्कार श्रोताओं, मुस्कुराओ। मुस्कुराने में पैसे नहीं लगते, लेकिन मुस्कुराने से खुशियां जरूर आती हैं। जीवन में भागा दौड़ है, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, पर इस सब के बीच केवल एक चीज है जो आपको सदा के लिए खुशी दे सकती है, और वह है आपकी खिलखिलाती हंसी। तो एक बार जोर से खिलखिला लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम है, कई सारी और मुसीबतें भी हैं। इन सबके बीच हमारे पास हमारा अपना बचता है, वो है मुस्कुराना और खिलखिलाना। तो हंसी एक ऐसा उपहार है जो हमें मिला है और जो हमें बनाता है भीतर से मजबूत। अगर कहीं हार रहे हैं तो मुस्कुरा लीजिए, वो मुस्कुराहट आपकी जीत की प्रेरणा बन जाएगी। कभी अगर जीवन में कोई समस्या सामने दिख रही है तो बस मुस्कुरा लीजिए, वह समस्या के लिए दवा बन जाएगी आपकी अपनी मुस्कुराहट। और कोई भी साइड इफेक्ट इसके है नहीं, यह शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। तो मुस्कुराइए और हंसिए जोर से ठहाके लगाकर।

शेर पढ़ा था कहीं कि हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, मुस्कान हो तो हर मुश्किल भी आसान लगती है। हंसी हमें जोड़ती है, हमारे रिश्तों में मिठास भरती है, दिलों के बीच दूरियां कम करती है, और जब हम हंसते हैं तो ना ही हमारा मन हल्का होता है बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। कभी देखा है दूर से आते हुए किसी अनजान व्यक्ति को एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, वो मुस्कुराहट उसके साथ एक लंबी दूरी तक चलेगी और जाने कितने चेहरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना आपके लिए सबके लिए अच्छा।

क्या खूब कहा है कि गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, हर दर्द को पल भर में भुला जाती है हंसी। तो जीवन में अगर कोई भी समय आपको मिलता है तो एक खास समय निकालिए अपने लिए और अपने परिवार के बीच, अपनों के बीच बैठकर जोर से ठहाके लगा लीजिए। ठहाके लगाने का मन नहीं है तो कम से कम मुस्कुरा ही लीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हंसी मजाक में कोई कुछ कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे लिए गलत कह दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को भूलकर हम सकारात्मक रूप से लेकर अपनी आत्मविश्वास के साथ जीवन के प्रति हल्का फुल्का नजरिया अगर रखें तो मुस्कुराना बहुत आसान होगा। तो मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए और कुछ इस बात की तरह कि मुस्कुराने की आदत डाल लो दोस्तों, ये वही दौलत है जो मुफ्त में मिलती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएंगे और दो बार जोर से ठहाके लगाएंगे और जी लेंगे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से और साथ में आसपास के लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते।

जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय

0: तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का

0: अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगतोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने

0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
1: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
2: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा। पैचू बावरा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, रामी धुबन फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में राम मूर्ति के बोल और हीरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, नमस्कार।

0: सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी सहेलियों सखियों को और सखा को दीपा माहेश्वरी
2: राति श्रीवास्तव का नमस्कार।
3: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है। पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही है, ये ऊपर से लेके नीचे तक
2: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है।
3: बात तो बिल्कुल सही है और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
2: होते रहना चाहिए। और गर्मी के ये जो दिन है ना इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है, इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें। बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें,
3: बिल्कुल,
2: तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
3: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका

0: करते रहे, नारियल पानी लेते रहे, ताकि जो खनिज मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो, और जरूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले, है ना।
1: और साथ ही
0: 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और बिल्कुल 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है, तो पूरी तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने शरीर
1: बिल्कुल अपने को पूरा ढक के निकले, जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं, जो सैलेड हैं, वो आप जरूर खाएं, और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिए, बहुत ज्यादा जरूरी है समय अपने आप को रखना
0: जी। और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी हैं कुछ ना कुछ, तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तालाब होना ना हो, पर अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में, और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन, हल्का इस तरह का रेसिपी बना ले,
1: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है, क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज
0: जी,
1: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
0: हल्का
1: वगैरह लें।
0: और बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को, सखियों को, कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे।
1: तरह तरह के व्यंजन
0: जी,
1: तरह तरह के चावल,
0: तरह तरह के चावल के व्यंजन आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या, तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस तरह का
1: बिल्कुल, क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में। तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी, कौन सा ऐसा व्यंजन है जो बहुत ज्यादा पसंद है, जो आप बना आते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
0: बिल्कुल। और आरती, आज हमने हमारे जब भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है, आलोचना। तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं लेकिन आप तक पहुंचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं, और क्या आपको लगता है ये
1: आप क्या सोचते हैं,
0: क्या सोचते हैं इसके बारे में।
1: सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं,
0: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं बड़े, मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षण, अब जो घर के जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए इसके सकारात्मक विचार भी
1: हर चीज के दो पहलू होते हैं,
0: गुण हर एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं, तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
1: कि इसमें नकारात्मक पहलू क्या है,
0: क्या
1: इसके
0: है?
1: और सकारात्मक क्या है। और साथ ही आज हम बात करेंगे साड़ियों के संसार लेकर आए हैं,
0: तो साड़ियों के संसार आज कहाँ चलने वाले
1: हैं। आज हम साड़ी लेकर आए हैं कलमकारी साड़ी जो आंध्र प्रदेश में बहुत की है,
0: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है, तो बहुत सारे संदेश लिखने हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
1: तो गीत सुन लेते हैं पहले,
0: चलो चलते हैं।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी,
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने।
0: बिल्कुल।
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए हैं कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए,
1: गरिमामय लुक आए।
0: तो कलमकारी साड़ियां कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती है, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियां हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती है, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: बहुत सुंदर लगती हैं
0: जी।

0: कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी
1: जी,
0: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का तकनीक अपनाई जाती है।
1: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
0: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई। मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल हैं। प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं।
1: जी, अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती, विष्णु या महाभारत, रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियां कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
0: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं।
1: जी,
0: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
1: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृति की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है।
0: जी, कितना इतना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
1: और हम देखिए ना, जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं। हम जानते ही नहीं कि साड़ी, अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
0: बहुत मेहनत है,
1: कितनी मेहनत है, परिश्रम।
0: बिल्कुल, और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
1: क्या बात है, और कलमकारी डिजाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिजाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है।
0: जी, और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं।
1: जी, कलमकारी साड़ियां आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर निकाल देना है। और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आंच पर उल्टी तरफ से ही स्त्री इसे घरना है।
0: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियां वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियां पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
1: बिल्कुल सही कहा, और इसकी जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और ये सच में ये साड़ियां इतनी सालों तक चलती है कि हाँ, नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन नहीं लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल मन
1: नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ,
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही है बिल्कुल, जिसके लिए सब लोग मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा।

0: ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल, और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना, वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते
1: हैं। और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है, क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी। जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं, तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
0: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चल रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ एआई चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा हो रहा है।
1: ये शोध में सामने आया है कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे, वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती
0: है और हम शिकायतें करते रहते हैं, आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए।
1: बिल्कुल, और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी तनाव वाला भी और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, भूलने लगते हैं हम चीजों को।
0: हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं।
1: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है। और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलीपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी जो कमाई होती है

0: मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां इंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
1: ऐसे
0: तो
1: गेम बना रहे हैं ना वो लोग
0: जी,
1: कि जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है। जैसे कि बच्चों में होता है,
0: हाँ,
1: वैसे बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके की गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि उनको
0: तो ये और उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली चीजें हाँ। हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से।
1: और सबसे बड़ी बात है दीपक कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके की वर्चुअल दुनिया में रहने के।
0: बिल्कुल। और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है। वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
1: बिल्कुल। और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार। जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था। तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी। जब से आए नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले। इससे सीखा उससे सीखा, ज्ञान का पान कर लिया। अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ। वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं। नींद उड़ गई उनकी, लेकिन रातों को भी बतियाते हैं। डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल। डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं। बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने, दवा खोज कर खाते हैं। उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है,
0: बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद
1: जी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल,
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़े ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास, आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। और साथ में कहती है, फायदा तो मुझे यही नजर आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती है तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज का एक संतुलन देखिए जरूरी है।
1: ये जो चीजें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी है, अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीजों में ना फंसे, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीजें आती हैं, तो उसमें ना फंसे, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं, वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीजों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं

0: वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है। इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ये हम कह भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फायदेमंद है कि वो अपना दवाइयां मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पर, बहुत फायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आँखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीज़ें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीज़ें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज़ कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीज़ें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तक आप
0: और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
1: जी,
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
1: जी,
0: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं सीसीटीवी टाइप लगा दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल करना
1: के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीजें हैं
0: जी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है, मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है। और बताते हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध त्यौहार भी फोन भी जो है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
0: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते।

वाला जाते बनी मंजली छुप के छुपा के छुपी नजरें बचा के चुप चुप चली नहीं दोनों पलट नहीं।

0: अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है, फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता, तो आलोचना ऐसे ही तिक्त रस युक्त ऐसी चीज है। जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि तरीके से की जानी चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने की बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए, और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भाव ना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है, सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है, ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस कैसे की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
0: तो अब क्या करना चाहिए,
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: चलिए

0: आरती देखो, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही है।
1: खाने की इच्छा, तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात,
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से 1/2 कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, 1/2 कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें 1/2 घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे 1/2 घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है, फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर 1/2 घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम है, काजू है जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं, और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए वो डाल लीजिए, फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए, और फिर छिलके सहित

0: इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल की जो चावल के आटे के पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे। और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
0: चलिए
1: तो अब मैं बताते हैं कि चावल का डोडा, इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेल कर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारे समय की जो सुइयां
1: समय है, थोड़ी सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे। हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से। और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गांव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं। ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियाँ हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है,

0: मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और ट्वेल्थ के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली यू कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में, कि उन्हें मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में, ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला एप्रिन भी वाइट होता है, और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज और हार्डवर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
0: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
1: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू हुई। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, इट्स अ ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी, आपको विजडम एनालिटिकल पावर देता है जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरे से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
0: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
1: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
0: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
1: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे रिलेट होता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर एपीजे कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं, और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आए और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पर सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आए और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे, तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी है, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि

0: आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे, तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोले या ना बोले, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है। और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बड़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है। आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीजें अवेलेबल है जो स्पॉट पे उनको एम्पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का
1: शादी
0: मिलेगा कि
1: कराएगी।
0: हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट
1: बिल्कुल
0: उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज ए चाइल्डहुड, कि जो लेडीज थी वो ज्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वायरमेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टुडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं। शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। वो कोविड से शुरू किया है, फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे। 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था, हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने के वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही है। ऑफ कोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
1: क्या बात है।
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफ कोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा। उनका इतना सिंपलिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक

0: एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया।
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है
1: जी। फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे, यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है। जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता
1: अच्छा,
0: है
1: अच्छा।
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं। 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं। तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप उसे प्ले कर सकते हैं।

भाई 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम

0: करना शुरू किया डॉक्टर सुनीता?
1: एक्चुअली अब ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था. तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे. तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी.
0: और क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए.
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी. और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहां पे मैं भी पहुंची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई. लेकिन मैंने वहां पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया, और फिर वो सर्वाइव हुई. पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है. लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को जमीन पे डाल के रोड पे भीड़ लगा के बैठे हैं. तो मुझे रियलाइज हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया. मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई. ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया. दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया. तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया, वो स्टेबल हुए. फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है. तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए. जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई. अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहां पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए. तो फिर वही होता है ना, डॉक्टर ऑन बोर्ड. तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वो स्टेबल लेटर ऑन. तो
0: लेकिन ये कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई. आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
1: पहले तो कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं. उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं. एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारी ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमिडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए. बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए. ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स वेरी, टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स. तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में. तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से, तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से. जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए. अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी MOS की मिनिस्टर थी. तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है.
0: जी जी.
1: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको. एक्सप्लेनेशन के लिए आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है. और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं. अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है.
0: बिल्कुल.
1: और अगर हमारे देश में, अगर देख पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए
0: जी.
1: तो वो एक अच्छा मकसद है. एक जमाने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था. CPR क्या है,

0: पर एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था
1: जी।
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल मेरी कम्युनिटी हो या पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर एक एम्प्लॉई हो वॉचमैन हो, आज लोग इजिली बोल पा रहे हैं कि सीपीआर करना है।
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: अवेयरनेस बहुत
1: ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है।
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है बट एडॉप्टेशन नहीं आया है और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला अरे डॉक्टर हम सीपीआर मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं, तो उसको ये जेन्युइन डर था। तो मैंने बोला देखो अगर आप सीपीआर नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं, हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप सीपीआर कर रहे हो और समझो 1 2 3 1 में आपने देखा पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप सीपीआर करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30-60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीजें जाने या ना जाने वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है, और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में सीपीआर दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और इजिली मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे कि वो कैसे सीपीआर सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो, डरना नहीं चाहिए क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं वहां पे डॉक्टरों को सीपीआर आता ही आता है, वहां पे जाके बैच बना के कर सकते हैं या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फोन करके अगर सीपीआर सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूंगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए, 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमोसोनोग्राफी सुबह में, 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को सीए था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने की, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है, और उसकी पूजा के लिए जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनकी रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना,

0: और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूंगी, अरे मैं उस जगह जाऊंगी उसकी बात करूंगी। कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था, तो मुझे बोलती नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी तब मैं बायोप्सी करूंगी तब मैं ये करूंगी, मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली। तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं
1: था, प्रायोरिटी नहीं थी,
0: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने। वो सिर्फ बोली थी अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया। तो इन्होंने बहुत सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग वैक्सिंग सब चीज के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं। और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली उसका फॉलोअप उसके, तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की वो रेगुलर चेकअप पे कर, 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है कुछ गड़ तो नहीं रहा है, अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली, ये बेहद खतरनाक है।
0: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में, चैटजीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था। लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑल द मोस्ट 6-7 महीने किए, और जब आई तो काफी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं वो जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब से आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इंपल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज उसकी यूज करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज्यादा है, एज अ जोकिंगली, बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको, आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाज़म ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो उसके साइड इफेक्ट हुए
1: जी।
0: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है
1: बिल्कुल।
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट

0: की दवाई दर्द में खा रही थी,
1: सेम दवा.
0: हाँ सेम दवा. सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे ही घर की नहीं है, हर घर की है.
1: जी, जी,
0: क्योंकि
1: जी.
0: उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये यू नो दर्द का है, तो yes. वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं. बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उसे मोह है. तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया. और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं. क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द यू नो काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके यू नो कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई है.
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता. और यहाँ एक

0: और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द यू नो काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके यू नो कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता। और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: तो मेरे डैड बचपन में काफी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पॉर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, पर जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज ए चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना। ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट।
1: सुनते ही गाना

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेडिकल की दुनिया की, जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट इस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी। मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं
0: एज अ चाइल्ड ऑल्सो,
1: कभी टीवी देखा नहीं, ज्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज्यादा न्यूज भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
0: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीजें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
1: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है। पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूट क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में, और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग, और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन। बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करें, न कि कियोस में यूज करें। और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है, तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है। अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं, और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर, सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी हो, सब में ये बातें चल रही हैं। और मैं एक जरूर बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं।

0: किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: जी
0: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए
1: जी,
0: तो ये बहुत बड़ा चीज है और वी जस्ट प्रे और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मैं

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण के लिए 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने आज केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। IPL क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स

0: हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रद्धा लीजिए, अब सुनिए फिल्म संगीत।

सबसे पहले टू स्टेट्स फिल्म से ये ड्यूट गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। शंकर एहसान लॉय का संगीत है, आवाजें हैं अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीप्रदा की, बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के।

अरिजीत सिंह और नेहरा देश पांडे का गाया गीत था फिल्म किल दिल से। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। श्रोताओं आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, और अब प्रस्तुत है स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप के स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515

7023 9। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिर दर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खानपान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए, ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना। मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में यह शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
3: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: अविमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओं, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
3: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
3: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
3: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को

0: देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
1: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
0: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
0: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
0: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,

0: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
1: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
0: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
1: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
3: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
4: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
5: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
5: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
8: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है।

इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने।

0: कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।

0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
1: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
2: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
1: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
3: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
4: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
3: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
4: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
3: चलो संभल कर।

0: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
1: जी सर।
0: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
1: जी सर।
0: और तुम दाहिने तरफ जाओ।
1: जी सर।
2: हमला करो दुर्गा माता की।
3: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
4: साहब जी, साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
0: नारायण, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
4: नहीं, लेकिन साहब जी,
0: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूं।
4: साहब जी, साहब जी।
3: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
0: क्या हुआ तुम्हें? नहीं,

तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है। ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। शाम दे 6 वजन वाले ने हुण तो कुछ ही पलां च असीं आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों हिंदी विच समाचार रिले करांगे।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री उत्तर राज्य करण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोतियों होने ये गीत तो अनुसुनवा रहे हैं आदि पुरुष फिल्म चो आवाजा ने शास्त्रीय टंडन ते परंपरा टंडन दिया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली डीईएमयू रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जींदवासियों ने इस रेल को जींद और सोनीपत के बीच चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पंचकूला में बिजली विभाग के कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को शहरों में 2 घंटे और गांवों में 4 घंटे के अंदर बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने धान की सीधी बिजाई पर बल दिया और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रधानमंत्री की अपील पर हिसार में छबीले लगाकर राहगीरों को पानी पिलाया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज को एफसीआई गोडाउन से डिफरेंट डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है उसमें जो डीलर्स का रिमुनरेशन लंबे टाइम से स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डिब्बों वाली डीईएमयू रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2,500 यात्रियों की है। यह रेल शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली डीईएमयू रेलगाड़ी हरियाणा को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह रेलगाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल के विकास के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत है। भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन डीईएमयू रेल को आधिकारिक मंजूरी दिए जाने का जींद वासियों ने स्वागत किया है और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है। जींद नगर परिषद की अध्यक्ष डॉ. अनुराधा सैनी ने कहा कि यह जींद के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया ईंधन के किल्लत और प्रदूषण की मार झेल रही है, ऐसे में यह शत प्रतिशत प्रदूषण मुक्त रेल देश को एक नई दिशा दिखाएगी।
2: सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जींद से सोनीपत तक हाइड्रोजन डेमो ट्रेन को चलवाने के लिए रेलवे ने जो आज मंजूरी दी है, ये बिल्कुल प्रदूषण फ्री है और इंडिया में पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद को मिली है। ये जींद के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है।
0: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज पंचकुला के सेक्टर 20 में बिजली विभाग के कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में श्री विज ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी ली।
3: हमने उत्तरी में और दक्षिण में दोनों जगह अपने अपने कंप्लेंट सेंटर खोले हुए, 24 आवर ये वर्क करते। कोई भी 1912 पे डायल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। मैं चेक करने आया था कि दर्ज करने के बाद कितनी देर में लाइट ठीक हो। मैंने कुछ शिकायतकर्ताओं से 86 नंबर देखकर बात की है, कुछ सेटिस्फाइड है कुछ नहीं है। ऐसे ही रोहतक सर्कल में पेंडेंसी बहुत ज्यादा, लगभग 22 के करीब सुबह से कंप्लेंटें

0: चुकी हैं, अब भी ये ठीक कर चुके हैं, अब भी ये भी पेंडिंग है। अगर हमें और लोग लगाने पड़ेंगे लगाएंगे, ताकि लोगों की कंप्लेंट ठीक टाइम पे ठीक।
1: मोरनी क्षेत्र का उल्लेख करते हुए श्री विज ने बताया कि वहां पिछले दिन से बिजली आपूर्ति बाधित थी। इस संबंध में उन्होंने अधीक्षक अभियंता को मौके पर कर्मचारी भेजकर शीघ्र बिजली बहाल करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शहरी क्षेत्रों में बिजली संबंधी शिकायतों का समाधान अधिकतम दो घंटे के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जाए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 12 शिकायतों पर सुनवाई हुई। 4 शिकायतकर्ता बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि 7 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया और 5 शिकायतों को लंबित रखा गया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने धान की सीधी बिजाई पर बल दिया।
2: तरह के हालात है उसमें सीधी बिजाई बेहतर रहेगी। किसानों से मेरा अनुरोध है वो सीधी बिजाई करें, उनको कई फायदे होंगे। एक तो पानी में ट्रैक्टर का जोर लगता है, तेल ज्यादा फूकता है। अगर सीधी बिजाई करेंगे तो कम तेल के अंदर अच्छी तरह से बिजाई हो जाएगी और 8-9 दिन पहले वो अनाज पकेगा, उसके अंदर पानी का खपत भी कम होगी और खाद भी कम लगेगा।
1: उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को सीधी बिजाई अपनाने के लिए सीधे उनके खाते में 4500 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देती है। उन्होंने आम जन से सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान भी किया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन से अपील की है कि लू से बचाव के लिए अधिक से अधिक पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय पानी अपने साथ रखें। श्री मोदी ने अगर संभव हो तो राहगीरों को भी पानी पिलाने को कहा। प्रधानमंत्री की अपील पर हिसार शहर में आज अनेक जगहों पर छबील लगाकर लोगों को मीठा पानी पिलाया गया। हिसार से मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल नारंग ने बच्चों, बुजुर्गों, खुले में काम करने वाले किसानों और श्रमिकों को लू से बचने के लिए विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है।
3: हीट स्ट्रोक या फिर लू लग जाना, ये एक मुख्य बीमारी है जो इस समय गर्मी में बहुत पाई जाती है। इसका मुख्य इलाज प्रिवेंशन, सूती कपड़े पहने, वेंटिलेशन को मेंटेन करें, बहुत ज्यादा पानी पीते रहें। गर्मी में अगर काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोल पाउडर या पानी का सेवन निरंतर करते रहें। धीरे धीरे आधे आधे घंटे बाद रेस्ट लेकर शेड का यूज करते रहें, छाया में थोड़ी देर आराम करते रहें।
1: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने आज अपना पदभार संभाल लिया। पदभार संभालने से पहले उन्होंने बोर्ड परिसर में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री शंकर लाल धूपड़ ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाना होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में नकल और बाहरी हस्तक्षेप को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह, तेज और विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश के किसानों को खेतों में सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस पंप की कुल लागत का 30% केंद्र सरकार और 45% राज्य सरकार देती है। किसान को केवल अपनी तरफ से 25% राशि का भुगतान करना होता है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार 3 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर तक के सौर ऊर्जा पंप लगा सकते हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली DEMU रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति दी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: ਬੇਪਰਾਗ ਦੀ ਤਰਸ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਬੋਲ ਸੀ ਜਾਨੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ।
1: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
2: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रहीं। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
1: ये आकाशवाणी है।
2: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
1: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
2: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
1: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
2: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
1: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
2: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
1: ये आकाशवाणी है,
3: आकाशवाणी है।
0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਸਰੋਤੇ ਜੈਮਾਲਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
2: ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਹੈ ਦੇਵ ਦਰਸ਼ਨ ਧੂਪ, ਅਗਰਬੱਤੀ, ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ, ਕੋਨਸ ਔਰ ਹਵਨ ਸਮੱਗਰੀ।

सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है जयमाला में। दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है दिलजले फिल्म की इस देशभक्ति रचना से, बोल जावेद अख्तर के, संगीत अनु मलिक का, गायक स्वर कुमार शानू और आदित्य नारायण के।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार कैलाश खेर। जयमाला कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं उत्सव फिल्म का गीत, रचना वसंत देव की है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक स्वर सुरेश वाडकर का।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। इस कार्यक्रम का अगला गीत उमराव जान फिल्म से हमने चुना है। शहरयार के बोल खयाम का संगीत, आवाज आशा भोसले की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
3: देव दर्शन धूप।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति का गाया मिस्टर इंडिया फिल्म का ये गीत है। गीतकार जावेद अख्तर।

उसकी दीवानी बनती हो तुम खुद

समीर के बोल, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत, अभिजीत और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये दिल लगी फिल्म का गीत। जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में तेजाब फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार जावेद अख्तर, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: ये आवाजें मोहम्मद अजीज, अमित कुमार और सपना मुखर्जी की। विश्वात्मा फिल्म का गीत आनंद बख्शी का रचा हुआ, संगीतकार विजू शाह।

ਇਹ ਤੇਜਵੰਤ ਕਿੱਟੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਹੈ, ਗੀਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਨੇ।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का तीसरा भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।
1: यार विक्रम, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ।
2: हाँ, तो योर अटेंशन प्लीज, मिस ज़ायदा एक गज़ल पेश करेंगी।
3: ओह नो,
1: ओह यस,
3: आई डोंट नो व्हाट टू से। ओके ओके, क्या सुनाओ? अच्छा, ऐश किया।

0: इस शर्म इस निहार।
1: तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है विकी।
2: अरे मैंने देखा ही नहीं,
1: कहाँ खो गई थी?
2: भाई बस पे केक तो खिलाओ, मुंह मीठा करने को जी जा रहा है।
1: ओह आई एम सॉरी, माफ करना मैं बिल्कुल भूल गई थी, अभी लाती हूँ।
2: ठहरो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
1: ये लो।
2: थैंक यू। अभी तक नाराज हो?
1: क्यों आए देर से? और आए भी तो दोस्तों में ही मस्त हो।
2: कहाँ गिवी, तुम्ही को तो ढूंढ रहा था।
1: आई डोंट बिलीव यू।
2: अच्छा बाबा ना सही, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं?
1: कई तरीके हैं, लेकिन तुम तो जानबूझकर।
2: ओ सुनो करीब आओ।
1: हटो, देखो बाहर कोई आया है।
3: अरे किवी। ओ सॉरी, तुम्हारी फ्रेंड नीना है।
1: मैं अभी आई।
4: अरे भाई विकी, अमा अकेले अकेले क्या खाया जा रहा है?
2: जूते खा रहा हूँ यार, जरा सी देर हो गई आने में, किवी इतनी नाराज है मुझसे, बस इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
4: यार अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, बाद में क्या होगा?
2: तुम तजुर्बेकार आदमी हो यार, तुम ही तो बताओ।
4: अब मेरा ख्याल है ज्यादा कोशिश करने से केस बिगड़ जाता है, तुम्हारे आने से पहले तो अच्छी बली थी, बस तुम्हें देखते ही मूड ऑफ हो गया।
2: जाहिर है, पहले मनाने वाला कौन था। ठीक है यार, अब देर सवेर हो ही जाती है, मांग ली माफी एक बार दो बार।
4: डोंट बी सो सीरियस,
2: आओ
4: बाहर चलो।
2: नीना आई? ओ यस, ये साथ उसके डैडी आए हैं क्या?
4: डोंट बी स्टूपिड, उसका हस्बैंड है।
2: नहीं यार, ये तो उम्र में नीना से कम 20 साल बड़ा लगता है।
4: लगता ही नहीं है भी।
2: सच? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।
4: क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आता?
2: कैसे हो सकता है, मैं नीना को अच्छी तरह से जानता हूँ,
4: ये मुझे नहीं मालूम।
2: अरे भाई, किसी जमाने में बहुत दोस्ती थी हमारी।
4: अच्छा।
2: जानते हो, हमारी पहली मुलाकात बेहद दिलचस्प थी। उन दिनों मैं जर्मनी से लौटा ही था। एक रोज शाम को ग्रीन लाइट के बाहर मैं किसी का इंतजार कर रहा था।
5: कीवी का?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, कीवी से तो मुझे नीना ने ही बाद में इंट्रोड्यूस करवाया था, कोई और थी, तुम नहीं जानते उसे।
5: हाँ, तो फिर क्या हुआ?
2: मैं वहां खड़ा इंतजार कर रहा था, काफी देर हो चुकी थी, वो नहीं पहुंची। तभी अचानक मैंने देखा एक लड़की भी वहां मेरी ही तरह खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी, वो भी काफी देर से खड़ी खड़ी बोर हो चुकी थी। एक आध बार हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर खड़े खड़े इंतजार करते रहे। तब अचानक मेरी तरफ वो बढ़ी और मैं
6: आप शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं?
2: जी जी हाँ, किसी को यहाँ 6:30 बजे आना
6: और वो नहीं आई।
2: आई?
6: ऑफ कोर्स, अगर किसी लड़के को आना होता तो आप 10 मिनट इंतजार करके चले गए होते, और अगर आप अपनी बीवी का इंतजार कर रहे होते तो आप इतने बेचैन न होते।
2: आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है।
6: हाँ, अच्छी होती तो मैं वक्त पर न पहुंचकर आधा घंटा लेट आती।
2: आई सी, आप भी किसी का?
6: जी हाँ, उसे भी 6:30 बजे यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग वक्त तय करते वक्त ये क्यों नहीं सोच लेते कि वो वक्त पर पहुंच भी सकते हैं या नहीं।
2: और कई बार ऐसा भी हो जाता है, यू नो 11th आवर पर कोई काम निकल आता है।
6: काम क्या होता है, आदमी की विल स्ट्रांग होनी।
2: देखिए अब हम दोनों को ही इंतजार करना है, तो क्यों ना अंदर बैठ के किया जाए। आई मीन इफ यू डोंट माइंड हैविंग ए कप ऑफ कॉफी विद मी।
6: मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं, अकेले बैठना बहुत ऑड सा लगता है।
2: मुझे भी, इसीलिए तो आइए ना।
6: चलिए।
7: सर
2: दो कॉफी, आप कुछ और लेना पसंद करेंगे?
6: नो थैंक्स, बस कॉफी ठीक रही।
7: बस दो कॉफी ले आओ।
8: यस सर।
6: जगह मुझे बहुत पसंद है, आप यहाँ अक्सर आते हैं?
2: नहीं नहीं, यही कभी कभी। आप जिनका इंतजार कर रही थी
6: वो फ्रेंड ऑफ माइन।
2: नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था अगर वो इस वक्त आ जाए तो आपको मेरे साथ बैठा देखकर बुरा तो नहीं मान जाएंगे?
6: ओह नो, वो क्यों बुरा मानने लगा, उससे मेरी अपॉइंटमेंट 6:30 बजे की थी, 7 बजे की नहीं। आप अपनी बात कीजिए।
2: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
6: शुगर?
2: एक चम्मच।
6: गुड, मैं भी कॉफी में सिर्फ एक चम्मच चीनी पसंद करता।
2: मेरा ख्याल है ज्यादा मीठा डालने से कॉफी का मजा खराब हो जाता है, वैसे यूरोप में लोग कॉफी

0: बिना चीनी और दूध के पीना ही पसंद करते हैं।
1: तो आप यूरोप हुए?
0: जी हाँ, मैं हायर स्टडीज के लिए जर्मनी गया था।
1: क्या करते हैं आप?
0: मैं इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल्स में स्पेशलाइजेशन किया।
1: आई सी, आपने फॉरवर्ड मोटर्स का नाम तो जरूर सुना
0: है। जी हाँ जी हाँ, बहुत बड़ी फर्म है।
1: मेरे डैडी ही उसके मालिक हैं।
0: ओह आई सी।
1: कॉफी अच्छी है?
0: जी हाँ जी हाँ।
1: मैं भी डैडी के साथ अमेरिका गई थी, लौटते हुए यूरोप जाने का भी इरादा था, लेकिन डैडी को जल्दी इंडिया वापस पहुंचना था, बस चांस ही नहीं मिला। वहाँ कितना कुछ है देखने को।
0: बहुत, लेकिन मैं भी ज्यादा घूमा नहीं, बस पढ़ता ही रहा।
1: Really? How unlucky.
0: आपके दोस्त आए नहीं?
1: आपकी भी तो
0: वो तो बाहर से ही लौट गई होंगी।
1: Oh, I'm so sorry. मेरी वजह से आया?
0: नहीं नहीं, आपसे मिलना भी तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी।
1: आपने तो अभी तक मेरा नाम भी नहीं पूछा।
0: तो आइए अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर लें। मेरा नाम विक्रम है।
1: मीना, मैं साइकोलॉजी में एमए कर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
0: उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे।
1: ओह नो, बल्कि आपने तो मुझे और बोर होने से बचा लिया। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं
0: अभी?
1: नहीं, मेरा मतलब है बिजनेस या
0: बिजनेस के लिए पैसा चाहिए मैडम, वो मेरे पास नहीं। सर्विस कर रहा हूँ, मैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हूँ।
1: बिग शॉट,
0: बस रोटी पानी का खर्चा चल जाता है।
1: एक पर्सनल सवाल पूछूं?
0: पूछिए।
1: आप एंगेज्ड हैं?
0: ओह नो। आप?
1: डैडी जल्दी मेरी शादी कर देना चाहते हैं, पर मैं अभी नहीं चाहती।
0: ठीक ही है, यू लुक स्वीपिंग।
1: आप मुझे फ्लैटर कर रहे हैं मिस्टर विक्रम।
0: अब आपकी और हमारी दोस्ती हो गई है, मेरा ख्याल है आप मिस्टर हटा सकती हैं। वैसे कॉलेज में यार दोस्त मुझे विकी का कभी पुकारते थे।
1: अच्छा?
0: जी हाँ।
1: सच बहुत मजा आया आपसे मिलकर। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, घर पर आज डिनर है, कुछ लोग आ रहे हैं।
0: ओह श्योर। वेटर,
1: अगर आप बुरा ना माने तो मैं दे दूँ।
0: आप मुझे शर्मिंदा कर रही।
1: अच्छा, फिर कभी मिलिएगा, कभी घर पर आ जाइए या टेलीफोन ही कर लीजिए।
0: ओह श्योर, आपसे तो हमेशा ही मिलकर खुशी होगी।
1: नाइट।
0: गुड नाइट। बस फिर टेलीफोन कॉफी अपॉइंटमेंट करते करते हम लोग लगभग रोज ही मिलते। एक आधा कमला तुम नहीं जानते हो,
2: वही जिसका तुम तब इंतजार कर रहे थे।
0: हाँ, वो भी नीना से मिली, लेकिन दोनों के बीच इतना फर्क था कि निभ ना सकी। उन दिनों मेरे दिमाग में अजीब हलचल थी, समझ में नहीं आता था मुझे क्या करना है, किधर जाना है। कमला ने कभी मुझसे साफ साफ लफ्जों में कुछ नहीं कहा था, फिर भी मैं जानता था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। नीना सिर्फ दोस्त थी, शादी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी उससे मिलने को, उससे बातें करने को बहुत मन करता था। हम लोग ग्रीन लाइट पे घंटों बैठे बेशुमार बातें किया करते। मुझे याद है एक रोज मैंने इनडायरेक्टली शादी की बात छेड़ी।
1: शादी विकी, मैं समझती हूँ एक अरेंजमेंट है, इसकी बुनियाद किसी भी सेंटिमेंट, मेरा मतलब है भावनाओं पर नहीं रखनी चाहिए। आज के जमाने में चाहे अच्छा समझ लो या बुरा, जिंदगी में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। और ये जो फजूल लव प्रेम इश्क मोहब्बत की बातें हैं ना, सिर्फ अनपढ़ लोगों को ही अपील करती हैं, मैं कम से कम मुझे तो नहीं करती।
0: लेकिन लाख कोशिश करने पर भी मैं कमला को नहीं भूल सकता।
1: क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और उसकी भी शादी नहीं हुई, और फिर भूलने की जरूरत भी क्या है, शादी के बाद भी तुम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रह सकते हो।
0: मैं तो जब भी ऐसी बात सोचता हूँ एक अजीब सा डिप्रेशन होता है।
1: हो सकता है, बचपन में इमैच्योर माइंड होता है ना, बस इसीलिए भावुकता हावी हो जाती है, और उस भावुकता में अंधे होकर हम ये भूल जाते हैं कि प्रेमिका और बीवी दो अलग अलग चीजें। देखो ना, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ सोसाइटी में उठना बैठना है, तुम्हारे इंटरेस्ट और उसके शौक एक से होने चाहिए। भी बुरा ना मानना विकी, बट कमला इज हार्डली अ मैच फॉर यू।
0: नहीं, बुरा मानने की तो कोई ऐसी बात नहीं है, कई लिहाज से मैं खुद भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। तुम्हारे साथ बैठकर मैं कितनी बातें कर सकता हूँ।
1: इसीलिए ना कि इंटेलेक्चुअली हम एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं, और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अब अगर हमारी तुम्हारी शादी हो जाए तो हम दोनों की
0: बुद्धि। छोड़ो, ऐसी बात सोचने से भी क्या फायदा।
1: क्यों नहीं विकी, आखिर क्यों नहीं? तुम इसलिए ये बात कहते हो, डरते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ।
0: ये भी एक अहम वजह है।
1: गरीब लड़की अगर किसी अमीर आदमी से शादी करके उसकी दौलत में शेयर कर सकती है, तो तुम मेरी दौलत से भागते क्यों?
0: छोड़ो नीना, मुझे उलझन होती है।
1: तुम्हें अपने आप पर एतबार नहीं है विकी?
0: हो सकता है, लेकिन लेकिन जाने क्यों मुझे ये लगता है ये कभी नहीं हो सकेगा। तुम्हारे डैडी,
1: मेरे डैडी

0: को मेरी खुशी चाहिए और अपनी खुशी के लिए मुझे तुमसे बढ़कर और क्या मिल सकता है?
1: नीना,
0: सिर्फ एक बार विकी, प्लीज मेरे साथ चलकर डैडी से मिल लो।
1: अच्छा,
0: अभी आज ही इसी वक्त।
1: इसी वक्त? ये कौन सा वक्त है? डिनर टाइम हो रहा है।
0: नहीं नहीं, अभी अभी।
1: अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, चलो।

यादों की परछाइयां, इस नाटक का अभी आपने तीसरा भाग सुना। लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का चौथा और अंतिम भाग कल सुनिएगा हवा महल कार्यक्रम में।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए, शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। अगला कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत उड़ान फिल्म के गीत से। संगीतकार अमित त्रिवेदी, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, आवाजें अमिताभ भट्टाचार्य और अमित त्रिवेदी की।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

शान की आवाज में आप सुन रहे थे तुम मिलो तो सही। इस फिल्म का शीर्षक गीत इरशाद कामिल का लिखा हुआ, संगीतकार संदेश शांडिल्य। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।

విచిత్రలు. बेवकूफियां इस फिल्म के लिए अन्विता दत्त का लिखा ये गीत श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में है. संगीतकार रघु दीक्षित.

0: नेहा कक्कड़ और विशाल मिश्रा की आवाजों में जबरिया जोड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार राजशेखर, संगीत विशाल मिश्रा का। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: FM 107.2 MHz ते ई आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। रात दे 8:45 होने वाले ने हुण तो कुछ ही पलां च असीं आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों हिंदी विच समाचार ही लेकर आंगे।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई

0: इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

0: डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।
3: लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। आज इस कार्यक्रम में पहला गीत नाइट इन लंदन फिल्म से। आनंद बख्शी के बहू लक्ष्मीकांत पेरेलाल का संगीत, गायक स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अगले गीत में मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले की आवाज है। लाट साहब फिल्म का ये गीत हसरत जयपुरी का रचा हुआ है, धुन शंकर जयकिशन की।

0: अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अगला गाना हमराज फिल्म से हमने चुना है। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, आवाज महेंद्र कपूर की।

फर्ज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, आनंद बख्शी की वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपके लिए कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं सीआईडी 909 इस फिल्म का गाना, एसएच बिहारी का लिखा हुआ, धुन ओपी नैयर की है, गायक कलाकार आशा भोसले और महेंद्र कपूर।

क्या कर डाला। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इस फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक स्वर मुकेश और शारदा के।

कैफी आजमी के बोल खयाम का संगीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आखिरी खत फिल्म का गीत। इसी के साथ आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बदाम ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
1: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: को चूमे ओ हो हो हम जब चले तू।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह।

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला तुम गाने में हमको हराया, हाँ तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी?
2: हाँ।
1: बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो एक चौकरा एक चौकरे गार्डन में घूमता है, तो फिर कबाब में अड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है, ये कसरत का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी, तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई।

और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की यह फिल्म है, रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा। सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए। सन 1976 नागिन। सन 1979 जानी दुश्मन। और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कुछ ही पलों में आप सुनेंगे छाया की।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

कभी कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है, प्यारा सा, दिल की धड़कन सा। फिर एक दिन वो खामोशी से दूर चला जाता है, बहुत दूर। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है जो हर जगह आपको घेरे रहता है। हम उसके लौटने की उम्मीद करते हैं पर वो नहीं लौटता। हम खुद को समझाते हैं, सोचते हैं, कहां, कैसे हमने उसे खो दिया, क्यों। खुद को कोसने लगते हैं, अपनी भावनाएं, अपने जज्बात, अपने आंसू, अपना वक्त हम बर्बाद करते चले जाते हैं। अफसोस, हम ऐसे रिश्तों की कद्र करते हैं जो हमारे होते ही नहीं हैं। हाँ, ये सच है, वो रिश्ते हमारे होते ही नहीं हैं।

कुछ रिश्ते रेत की तरह होते हैं, जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो उतनी ही तेजी से फिसल जाते हैं। हाँ, कोई आपके दिए गए सारे प्यार के बावजूद किसी और को चुनता है तो उसे ऐसा करने दो। कोई बिना वजह खूबसूरत रिश्ते में दूरी बनाता है तो उसे जाने दो। किसी ऐसे शख्स को चुनना जिसने आपको कभी चुना ही नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ, ऐसे रिश्ते में ऊर्जा लगाना व्यर्थ है।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के दर्शन का लाभ पर्वतारोही की अपेक्षा वो अधिक अच्छी तरह से ले सकता है जो किसी दूर समतल क्षेत्र में खड़े होकर उस सौंदर्य को निहारता है। बस ऐसे ही जिंदगी में नजदीकियों की अपेक्षा कभी कभी दूरियां भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि बहुत करीब से अक्सर हम सत्य को साफ साफ देख नहीं पाते। और जीवन तो अभिनय से नहीं, सच के साथ चलता है। हाँ, सच के साथ।

जिसे आपके जीवन से जाना है वो सबसे आरामदायक किनारे पर भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। ऐसे में किसी को जबरदस्ती रोकना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें करना, रोना सब मूर्खता है। सच तो ये है कि स्वयं को कभी किसी ऐसी डोर से मत बांधो जिसकी पकड़ खुद तुम्हारे हाथ में नहीं हो।

कुछ प्रेम कथाएं योजनाओं से नहीं संयोगों से जन्म लेती है, न उन्हें गढ़ा जाता है न रचा जाता है, वे बस घट जाती हैं अपने आप ही। और जब ये प्रेम कथाएं किसी उपन्यास के आखिरी पन्ने पर आते आते दम तोड़ देती है, तब दिल रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे चुपचाप जीने लगता है। मन के किसी परकोटे के भीतर घायल सा तड़पता हुआ। काश हम समझ पाते कि किसी रिश्ते को शब्द नहीं बचाते कभी। कई बार सम्मान और संवेदनशीलता ही उसका अंतिम

0: और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक।

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

श्रोतो रबी शेरगिल ते गाए गीत तो बाद प्रोग्राम दे अगले गीत वल रुख कर रहे हैं। यह गुरदास मान की रचना अमर हल्दीपुर की तरसेज, आवाज भी गुरदास मान की।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मेरी लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो इस वेले तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सुरसांज एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज ते। असी चुने गीत ने निभाया मदन मद्दी ने, संगीत नाल सजाया सुखशिंदर शिंदा ने,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।

0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।